मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 48 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर

दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगणभूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम। अर्थात मैं माता उमा के पति, देवताओं के गुरु, जगत के कारण, सर्पों को आभूषण रूप में धारण करने वाले और समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। शिव की आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। जब हम सत्य, करुणा, संयम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब वास्तव में शिव तत्व को अपने जीवन में उतारते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत ये भजन सुनिए।

ईश्वर प्राप्ति की वो प्यास, वो दिव्य तड़प है जो मनुष्य को सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठाकर आत्मिक शांति और सत्य की खोज की ओर ले जाती है। जब मन में ये भावना जागती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा को जानना और उनके निकट पहुंचना है, तब भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। संतों ने भी कहा है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी साधनों से अधिक अंतःकरण की निर्मल भावना से बनता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका क्या?

0: किसने है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जी हाँ, भक्ति में भाव का अत्यंत बड़ा महत्व है। शास्त्रों और संतों ने भी बार बार कहा है कि ईश्वर बाहरी आडंबर से अधिक हृदय की सच्ची भावना को देखते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है, कपट और छल मुझे प्रिय नहीं है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता फूल फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब मन में सच्चा प्रेम विश्वास और समर्पण होता है, तब साधारण सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुँच जाती है।

जप ले हरि का नाम एक अत्यंत सुंदर भक्ति संदेश इस भजन के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। मानव जीवन अनमोल है और इसे ईश्वर स्मरण में लगाना चाहिए। संसार की भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन ईश्वर का नाम, सत्कर्म और भक्ति मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। कलयुग में ईश्वर के नाम का स्मरण जीवन सागर से पार लगाने का

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के विचार।
1: चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए पूंजी और संसाधनों का केंद्रीकरण घातक है। इसका एकमात्र विकल्प है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, और ये समाजवाद से ही संभव है। जो सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हो, उसे सत्ता की शक्ति के सहारे परास्त नहीं किया जा सकता। जनतांत्रिक प्रतिनिधियों को गंभीरतापूर्वक कठोर सत्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी लोकतंत्र कायम रह सकता है। भारत की संरचना और चरित्र मूलतः बहुवादी है, और यहाँ सभी समुदायों का आपस में सामंजस्य बिठाकर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए सुखों दुखों को बांटते हुए जीना ही श्रेयस्कर है। राजनीतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए धर्म का इस्तेमाल करने से सांप्रदायिकता और अलगाववाद का उदय होता है। इसलिए राजनीति में लोक निष्ठा, लोक मत और लोक दृष्टि का आदर करना चाहिए। प्रत्येक युद्ध में इंसानियत की ही हार होती है और उसी की मृत्यु होती है। हमें अतीत की बातों को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना का प्रयास करना चाहिए। आलोचना करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अतीत की कमजोरियों से शिक्षा ग्रहण करें। सामाजिक विकास के लिए आज देश में एक नया माहौल, प्यार का वातावरण तथा मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि गरीबों की मदद की जा सके। इसे एक आंदोलन का रूप देना होगा। सामाजिक बदलाव के संदर्भ में उन्होंने कहा था, सामाजिक बदलाव के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। क्रांति तब होगी जब मन में क्रांति होगी। भारत से अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी को मिटाने के लिए गांव में जाना होगा तथा युवकों का मानस बदलना होगा। युवकों की मानसिकता बाबूगिरी की सीमा रेखा में कैद होकर रह गई है। कुरीतियों के कारण आज समाज में गिरावट आई है, समाज की सोच में भी तब्दीली आई है। आज गंदगी फैलाने वालों को बड़ा और उसे साफ करने वालों को छोटा आदमी समझा जाता है। इस जहनियत को बदले बिना हम एक नए और शक्तिशाली समाज की रचना में सफल नहीं हो सकेंगे। इजारेदारी खत्म करने और असमानता मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकंजे से राष्ट्र को मुक्त किया जाए।

0: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आजाद के विचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने कृषि वानिकी से लाभ, इस विषय पर डॉक्टर मदन सेन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत।
1: डॉक्टर मदन सेन सिंह जी, आप विषय वस्तु से सज्ञ हैं, खेती बाड़ी जानकार आदमी हैं, सीआर से नैनी इलाहाबाद में
2: जी।
1: तो भैया आज आपसे बातचीत हुए कि जे भी हमारे किसान भैया रे खेती के साथे साथे वानिकी करे चाहते, मतलब वन लगावे चाहते, पेड़ पौधा लगावे चाहते
2: जी, जी, जी।
1: तो उनका कोने बातन पर ध्यान दे का है ताकि भाई खेती के साथे साथे जो पेड़ पालो लगावे के बात है, कृषि वानिकी के बात
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: उनके बड़े मुफीद रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हो, पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, भाई माटी की संरचना भी बनी रहे।
2: जी जी जी, कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत तेज बढ़ने वाले हों, जिससे आप अपने लाभ हेतु कम समय में अधिक उपज प्राप्त कर सकें।
1: जी,
2: कृषि वानिकी में रोपण हेतु सीधे तने वाले, कम शाखाओं वाले, विरल छत्र व साग तरासी सहने वाले वृक्ष प्रजातियों का चयन में प्राथमिकता देनी चाहिए।
1: हाँ।
2: कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों से बहुत लाभदायक होता है। यह जड़ें भूमि में जाकर नीचे से लाभदायक पदार्थ ऊपर लाती हैं, जो कृषि फसलों को फायदा पहुंचाती हैं, तथा वृक्षों की मूसला जड़ों की बढ़त इस प्रकार हो कि वह जल से खनिज लवणों को अवशोषण व फसलों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करके अधिक से अधिक उत्पादन दे।
1: अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात यह आवत है कि आखिर में कौन पेड़ है प्रकृति होनी चाहिए जेकर वृक्षारोपण करें?
2: वृक्षारोपण जैसे आपका है, ये सागौन है, पॉपुलर है, ये सब पौधों का लगाना चाहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पौधा लें, इसके अंतर्गत दो दली बीज वाले पौधे अगर लगाएंगे तो उसमें एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको जड़ें नीचे जाएंगी और दो दली बीज में जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन जो नाच रही है उसको पौधे फिक्सेशन कर लेते हैं, और जो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में फिक्स कर लेती है, आगे कोई फसल अगर हम बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन हमको भरपूर मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को दो दली वाली वृक्षों का चयन करना चाहिए।
1: अच्छा भैया, जैसे अपने क्षेत्र में गंगा जमुना का दुआबा है तो वहाँ कौन वृक्षन का रोपण करें?
2: उसमें किसान को देख चाहिए भाई, उसको ऐसा वृक्ष चाहिए जो उसको लकड़ी का काम भी आवे, चारा के भी काम आवे। तराई क्षेत्र के लिए चारा पत्ती के लिए आपका जैसे आपका बबूल है, बेर है, कचनार है, नीम है, सुबबूल है इत्यादि ईंधन के लिए, तथा बबूल, टाक, यूकलिप्टस, जामुन, सुबबूल, बिलायती बबूल आदि, तथा इमारती लकड़ी के लिए बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम और जामुन का चुनाव करना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात यह होती है जैसे इलाहाबाद से थोड़ा अलग हटके ज्यादा दूर ना है शंकरगढ़ या उसके आगे का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड तक फैला हुआ है, ऐसा में पथरीली जमीन यह है, बहुत उपजाऊ पर ना आया है, तो हुआ भी का वृक्षारोपण हो सकता?
2: जी जी, वृक्षारोपण हो सकता है, लेकिन उसके लिए चयन हमको देख के करना पड़ेगा किस पौधे का चयन करें। जैसे विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सुबबूल है, बबूल है, कचनार है, सहतूत है, ढाक, ईंधन के लिए अर है, सहतूत, बबूल, सुबबूल, सीरस, महुआ, चारा पत्ती के लिए एक आता है वृक्ष होता है झाड़ी नुमा अंजन, सीरस, तथा इमारती लकड़ी के लिए सागौन, शीशम लगाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाभ करने के लिए जहाँ आपका पथरीली जमीन हो, कोशिश से करना चाहिए किसान भाई, अगर उनको नहीं मिला तो बांस के पौधे भी बड़ा उपजाऊ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपजाऊ।
1: बांस का तो बढ़िया खेती हो रही बात और लाभ भी होता है।
2: जी जी।
1: अच्छा भैया, जैसे ज्यादातर किसान ऐसा ना है जो उनकी समतल क्षेत्र में है और खेती करत है, और साथ ही साथ चाहते हैं कि भाई मेड़ डांड पर या जो थोड़ी बहुत जमीन खाली पड़ी बा

0: उमा वृक्षारोपण करें,
1: जी जी
0: तो ताकि भाई उनके खेत में जो फसल उगा था उनका छान हमारे नुकसान ना हो
1: जी जी
0: और उनका बागवानी से भी लाभ हो, तो
1: जी
0: एमा का कुछ कैसे करते
1: हाँ,
0: हैं?
1: इसके लिए किसान को ये करना चाहिए कि खेत को पूरा उपयोग कर कर अधिकतम वह विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वह लगाए गए पेड़ को बेचकर धन प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ईंधन प्राप्त कर गोबर को कंडा बनाकर जलाने से बचा सकते हैं। अक्सर ये देखते हैं किसान जो जो दो चार जानवर रखते हैं उनका कंडा होता है, उसका उपली पात कर वो जो है खाना बनाने के यूज में करते हैं।
0: जी
1: लेकिन अगर किसान अगर फसल के साथ साथ अगर पेड़ पौधों का अगर किनारे किनारे अगर फसल के रोपे, तो उसका कार्य ये होता है कि उनको जो गोबर जो हम ईंधन जलाने के काम में आते हैं, वह जो हमारी लकड़ी जो किनारे किनारे पौधे हैं उसको
0: जी
1: झाड़ झंखार से हम भोजन करने के यूज में हम कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये रहा था कि भाई देखें छोटी छोटी नदी भी यहाँ आसपास में, जैसे
1: जी
0: सही
1: जी
0: नदी है
1: जी जी
0: ओकरे अगल बगल में देखें तो दिनों पार्ट पे किलोमीटर 2 किलोमीटर जंगल ही बा,
1: जी जी
0: तो हुआ के थक वृक्षारोपण करें।
1: नहीं, वहाँ पर भी देखिए किसान हमारा कोशिश ये करता है जहाँ खेत में लगाता है तो गेहूँ धान गन्ना आदि फसलों के साथ साथ वहाँ जो है सागौन लगाने पर अतिरिक्त ऊपर उपज प्राप्त हो सकती है उसको।
0: अच्छा
1: सामान्यतः 40 वर्ष में सागौन का पौधा तैयार होता है। सागौन के बीज से पत्तियाँ, छाल, फल आदि जैसे वन संपदा प्राप्त होती है। सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। वह टिकाऊपन के कारण इसका उपयोग निर्माण कार्यों, दरवाजों, खिड़कियों, फ्रेम, फर्नीचर, रेलगाड़ी के डिब्बे तक भी इसका उपयोग किया जाता है। सागौन का पौधा खेत में बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है। इन पौधों को सबसे अच्छा ये है कि इन पौधों को जानवर भी नहीं खाते, जैसे हमारा किसान इसमें जानवर से बहुत परेशान है। इनकी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सागौन के पेड़ पर रहने वाले पक्षी खेत के शत्रु कीट पतंगों जैसे चूहे आदि को नष्ट कर अपनी फसल की रक्षा करते हैं। खेत की मेड़ पर लगाए गए सागौन पौधों में अलग से सिंचाई व खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि खेतों में दिया गया पानी व खाद सागौन अपने आप मिल जाता है। इसलिए सागौन का पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलन भी स्थापित कर सकता किसान, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त कर सकता।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में इकलिप्टस सफ़ेदा का
1: जी जी जी
0: बड़ा
1: जी
0: प्रचलन बाटे।
1: जी जी
0: भाई यो सुने में आवत है कि ज़्यादा पानी सोखा था,
1: जी जी पानी
0: जमीन का
1: सोखता
0: नुकसान करा था, तो
1: जी जी
0: एकर वृक्षारोपण कितना सही बा कितना गलत
1: नहीं
0: है?
1: नहीं सही मतलब वहाँ के लिए तो गलत है जहाँ पानी की समस्या है। इसका सबसे अच्छा ये है कि यह तेजी से बढ़ने वाला है, हल्के छत्र वाली प्रजाति है।
0: जहाँ सीपेज क्षेत्र बाटे,
1: जी
0: जो उनकी
1: जी
0: नहर के
1: हाँ,
0: किनारे
1: वहाँ
0: आज
1: पर इसको इसका अगर
0: जहाँ
1: इसका
0: पानी लग रहा
1: जी
0: था,
1: जी
0: वहाँ
1: जी
0: एकर रोपण किया जाए
1: जी इसका
0: इसका?
1: रोपण अगर कर दे तो जो है ये काफ़ी लाभदायक होगा और काफ़ी अच्छा होगा।
0: और जहाँ पानी की समस्या
1: हाँ, वहाँ
0: बाटे,
1: पर इसको रोपने की किसान कोशिश न करे, उसके अलग जो है शीशम लगा दे, बबूल लगा दे, सागौन लगा दे, ये आपका जो अच्छा काम करेगा।
0: अच्छा भैया, बांस बसवारी अपने यहाँ का घर गांव का शोभा भी बा,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: जरूरत भी पड़ रहा था, चाहे छान का बात हो, चाहे घरे का बात
1: जी
0: हो, या
1: जी
0: कोई और
1: जी जी
0: उपयोग हो,
1: जी जी
0: बांस
1: जी
0: का उपयोगिता भी
1: जी
0: रहा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो ये कहाँ लगाओ जाए आजकल भैया, कैसे एकर देखभाल करें?
1: नहीं, बांस तो देखिए आप हर किसान जो है गाँव में अपना जैसे तालाब के किनारे लगाता है ऐसे जगह लगा, लेकिन इसमें वैज्ञानिक तरीके से बांस की पौध रोपित करने के उपरांत यह पौधा ऐसा है कि 6 से 7 वर्षों में एक बेड़ी के रूप में ले लेती है। इसके उपरांत इस बेड़ी में 3 वर्ष से अधिक आय के बांस को प्रत्येक वर्ष निकाल लेना चाहिए। कुछ कल्ले बेड़ी में छोड़ देना चाहिए। इन कल्लों को सामान्यतः बाहर की ओर छोड़ा जाता है। 1 वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व कल्लों को विदोहन नहीं करना चाहिए, मतलब कहना चाहिए मतलब 1 वर्ष के नीचे का पौधे को नहीं लेना चाहिए। किसी भी दशा में कल्लों को भूमि की सतह से 3 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं काटना चाहिए। जहाँ सघनता हो गई हो वहाँ सघनता वाले कल्लों को हटा देना चाहिए, भले ही इसमें वर्तमान वर्ष के कल्ले रह जाएं। यदि कम उम्र के कल्ले टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो उसको भी मुड़ा हुआ भाग काट के हटा देना चाहिए। जुलाई अक्टूबर तक कोई भी विदोहन कार्य नहीं करना चाहिए। बांस की बेड़ी के ऊपर मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए ताकि नया राइजोम सूर्य से प्रभावित न हो। हल्की छाया में बांस की बढ़त देखी गई कि बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ तक किसान हम देखते हैं कि वो जहाँ उनका बगीचा रहता है
0: जी जी
1: किनारे एक जगह जहाँ घूर बनाते हैं वहाँ पर अपना वो लगा देते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपने क्षेत्र में कुछ उसरीली जमीन
1: जी
0: भी
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: जिनमें ना तो खेती हो इसके बढ़िया ना तो
1: जी जी
0: बागवानी,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: का कोनो ऐसा पेड़ है जिकरे रोपण से जमीन भी उपजाऊ हो जाए और
1: जी
0: किसान का
1: जी
0: फायदा भी हो?
1: जी उपजाऊ के जैसे हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में है, उसमें जो है उसरेली वहाँ आंवला की खेती सफल हो है। आंवला लगाए,
0: आंवला लगाए के बढ़िया
1: आंवला लगाए, बांस भी लगा सकते हैं, बांस भी चूंकि इतना जो नहीं,
0: तो उनका लाभ है होए भाई
1: जी, आंवला भी लग सकता है।
0: डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बढ़िया जानकारी दे है ना, आप बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों ने अभी सुनी कृषि वानिकी से लाभ इस विषय पर डॉक्टर मदन सेन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दांतों में कीड़ों का लगना कारण लक्षण और उपचार इस विषय पर डॉक्टर प्रवीण तिवारी की वार्ता। लीजिए सुनिए।
1: आज हम बात करेंगे दांत और मसूड़ों से जुड़ी बहुत ही कॉमन या आम समस्याओं के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेंटल केरीज या कीड़ा लगने के बारे में। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि डेंटल केरीज या दांतों में काढ़ा क्या होता है और क्यों होता है। हमारे दांत कई प्रकार के मिनरल जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस आदि और ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं तथा हर दांत को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इनेमल जो दांत की सबसे बाहरी परत होती है और दांत को ठंडी और गर्म वस्तुओं से बचाती है। उसके भीतर की परत डेंटिन होती है और सबसे अंदर पल्प होता है जिसमें खून की नलियां व नर्व एंडिंग मौजूद होती है। बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट शक्कर और स्टार्च को एसिड में परिवर्तित करते हैं। तब यही एसिड पहले इनेमल की परत को नष्ट करना शुरू करता है और डेंटिन और पल्प तक को नष्ट कर देता है। इसी को डेंटल केरीज या कैविटी या दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं। डेंटल केरीज के लक्षणों की अगर बात करें तो ये शुरुआती दिनों में अलग अलग होता है और इलाज न होने पर समस्या गंभीर रूप लेने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है दांतों की सतह पर सफेद या हल्का भूरा और फिर काला दाग दिखाई देना, दांतों में छेद या गड्ढे का होना, दांतों में झंझनाहट का होना, गड्ढों में खाना फंसने लगने के कारण मुंह में बदबू आना। कैविटी का इलाज न होने पर यह डेंटिन और पल्प तक पहुंच जाती है। तब मीठा गर्म और ठंडी चीजें खाने में दर्द का अनुभव होता है। पल्प तक जब यह इन्फेक्शन पहुंच जाता है तब बहुत तेज दर्द होना, मरीज को लेटने या झुकने में ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, दांत के पास साइनस या मटर के दाने जैसे दिखना और इलाज न करने पर मुंह और आसपास सूजन या स्वेलिंग का आ जाना। कैविटी के होने के कारण और फैक्टर की बात करें तो ये कई कारणों से हो सकती है। पहला सबसे अहम कारण है दांतों और मुंह की साफ सफाई के प्रति लापरवाही। जी हाँ, ज्यादातर लोग सही प्रकार से ब्रश नहीं करते या रात में सोते समय ब्रश नहीं करते जिसके कारण दांतों की सतह और उनके बीच प्लाक जमा होने लगता है। यह एक सफेद चिपचिपा सी लेयर होती है जिसमें सलाइवा प्रोटीन खाने के कण तथा कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा अहम कारण है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फूड या मीठे पदार्थों का सेवन। सलाइवा या लार का सही मात्रा में न बनना या गाढ़ा होना भी एक कारण है डेंटल केरीज के होने का। दांतों की बनावट और उनकी मिनरलाइज होने कारण भी कैविटी होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि डीप फिशर के कारण ठीक से सफाई संभव नहीं होती। अगर कैविटीज के ट्रीटमेंट या इलाज की बात करें तो आजकल इतनी आधुनिक तकनीक आ चुकी है कि बहुत कम समय में दांतों के संरक्षण से ज्यादा नुकसान न पहुंचाने हुए दांतों के रंग की फीलिंग या मसाला भरकर शुरुआत में ही इसका इलाज किया जा सकता है। परंतु मरीज यदि बहुत दर्द या सूजन की स्थिति में डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए जाता है तो उनके लक्षणों या एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर नसों के इलाज जिसे RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसके द्वारा दांतों का बचाव किया जा सकता है। फिर दांत को हुए क्षति के अनुसार फीलिंग या कैपिंग के जरिए उन्हें पहले की भांति बनाया जा सकता है। यदि लोग ध्यान रखें तो कैविटी से बच सकते हैं। जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आए पेरेंट्स बेबी ब्रश से दांत साफ करें। छोटे बच्चों को दूध पिलाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर कराएं वरना नर्सिंग बॉटल केरीज का खतरा रहता है। बच्चे व बड़े दिन में दो बार ब्रश करने की आदत डालें। रात को ब्रश जरूरी करें। हर 3 महीने में ब्रश जरूर बदलें या जब भी लगे कि

0: क्रिस्टल मुड़ गया है। चॉकलेट, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे का सेवन कम करें। फ्लॉसिंग की आदत डालें, जिससे कि दो दांतों के बीच फंसे अंडकर्णों को निकालकर प्रॉक्सिमल कैरी से बच सकते हैं। हर 6 महीने में डेंटिस्ट से चेकअप जरूर कराएं।
1: दांतों में कीड़ों का लगना, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर अभी आपने सुनी डॉक्टर प्रवीण तिवारी की वार्ता। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुनिएगा। दोपहर 12:15 पर कमला बोस का ख्याल गायन सुनवाएंगे और रात 10:30 पर पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन सुनिएगा।

श्रोताओं, अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा हर रोज की तरह सुबह 8:45 पर। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मनीषा निरखी और शाम 7:45 पर अरुण गुलवाणी से भजन और गीत का आनंद लीजिएगा।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9 बजे, दिन में 11 बजे सुनवाएंगे एक ही कलाकार से 11:30 पर, रात 8 बजे और 10 बजे सुनेगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज सुनेगा सुबह 10:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:30 पर कलाकार होंगे बचाऊ लाल यादव और साथी रीता देवी और शैलेश कुमार शर्मा, सुनिएगा इनसे लोकगीत। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

सवा बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी नेहा मिश्रा की वार्ता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कितनी सफल हुई दुनिया। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: अनूप उपाध्याय से लोक भाषा कविता पाठ, साथ ही फूलचंद्र और साथियों से लोकगीत सुनवाए जाएंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता, डॉक्टर कुबेरनाथ राय का रचना संसार। रात 8:30 पर कार्यक्रम कानून और हम में उत्कर्ष शुक्ल की वार्ता होगी, बिखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी। और रात 9:30 पर सुनना न भूलिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुत विकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागं अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गौतम बुद्ध नगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य MLA धीरेन्द्र सिंहेन सह

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे।

0: करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां ICC 20x20 विश्वचषक क्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

काग भुशंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को कागभुशंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर कागभुशंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बढ़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभू और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या बिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया? परम ज्ञानी योद्धा कवि विद्वान कोई भी तो इससे नहीं बच सका है।

0: अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से भजन। फिल्मों से भजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। लीजिए सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये भजन, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और फिल्मों से भजन कार्यक्रम में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अमर प्रेम फिल्म से ये भजन लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से। समाचार
1: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
3: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
4: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी

0: डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप

की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन, राग है भैरव। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार,
1: है ना? तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार,
1: है ना? तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में

0: साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014

0: 2015 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस माहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस माहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वह स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत

0: से। कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जुनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकत दार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलावी अमन और सलामती, बाहमी इकतसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
2: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तस्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई।

0: आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि उसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी के खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 0111-2371-1 0111-2371-106। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों, मुहक्किकीन और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली, ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
3: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वजीर आजम मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जोर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं नमस्कार, आदाब, स्नेहिल अभिवादन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज और मैं हूं आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे।

श्रोताओं, आज 15 जून का दिन दो महत्वपूर्ण वैश्विक संदेश लेकर आता है। एक और है विश्व पवन दिवस यानी वर्ल्ड विंड डे, जो हमें स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है, और दूसरी ओर है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जो हमें अपने बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और देखभाल का संदेश देता है। आइए दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। श्रोताओं, विश्व पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को हम मनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के महत्व, उसके लाभों और पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। आज पूरी दुनिया ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, सुरक्षित और अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है। हवा से उत्पन्न बिजली न केवल प्रदूषण कम करती है, बल्कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी घटाती है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति के महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। अथर्ववेद में कहा भी गया है, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात ये पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जब हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वास्तव में हम अपनी पृथ्वी माता की रक्षा करते हैं। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में इसका नाम शामिल है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं।

और इस पवन ऊर्जा के मुख्य लाभों की अगर हम बात करें तो इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी होती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होती है, रोजगार के नए अवसर और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, और आज आवश्यकता है कि हम

आइए महसूस करें स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पवन ऊर्जा का आनंद इस गीत के माध्यम से।

और श्रोताओं, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको बताया था कि आज है 15 जून, हम विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मना रहे हैं। तो आइए करते हैं कुछ चर्चा इस विषय पर भी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 से और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक मान्यता भी दी गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकना तथा समाज में उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हमारे भारतीय संस्कार सदैव बुजुर्गों के सम्मान की शिक्षा देते हैं। तैतरीय उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य आप सभी को तो याद होगा ही, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता को देवता समान मानो और पिता को देवता समान मानो। इसी प्रकार एक और सुभाषित है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, अर्थात जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। आज के व्यस्त जीवन में अनेक बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा और

असुरक्षा का अनुभव करते हैं। कई बार वे आर्थिक शोषण, भावनात्मक उपेक्षा और असुरक्षा का अनुभव भी करते हैं और कई बार आर्थिक शोषण, भावनात्मक उपेक्षा या सामाजिक अलगाव का सामना करते हैं। श्रोताओं, ये बड़े बुजुर्ग हमारी गाइडिंग लाइट होते हैं। हमें इन्हें समय देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। इस डिजिटल युग में उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, आज जो युवा हैं कल वो भी वृद्ध होंगे, इसीलिए बुजुर्गों के प्रति सम्मान केवल नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज की पहचान भी है। और श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, हमारे बहुत से श्रोता हमारा कार्यक्रम बहुत ही चाव से, बहुत ही प्यार से सुनते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिख भेजी हमें नीरा त्रिपाठी जी ने, मैं आप सबसे उसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। भेजा है, बुजुर्ग हमारे घर की शान है, बुजुर्ग हमारा अभिमान है, बुजुर्गों को मत सताओ, उनसे सीखो संस्कार, बुजुर्गों को घर में रखो, ना छोड़ो उन्हें आश्रमों में, उनने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनका करो ध्यान, बुजुर्ग घर की शोभा होते हैं, उनको कष्ट मत दो, उनका अपमान मत करो, बुजुर्गों से ही घर घर लगता है, बुजुर्ग हमारी शान है, बुजुर्ग हमारे मान है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरा त्रिपाठी जी, बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी है और हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने सभी श्रोताओं का जो हमारा कार्यक्रम इतने प्यार से और चाव से सुनते हैं। और इसी बात पर आइए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आपको आज जो दो महत्वपूर्ण दिवस जिस पर हमने चर्चा की, संदेश सिर्फ यही देना चाहेंगे कि पहला, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छ पवन ऊर्जा को

अपनाएं और दूसरा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनके अनुभव और आशीर्वाद जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाजत अपनी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे को। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की।

0: आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: पापा लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
8: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
9: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए ये गाना।

राज फिल्म के इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। समीर ने गीत के बोल लिखे हैं, नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया है।

अब आप सुन रहे हैं राज रिबूट फिल्म का गाना। कौसर मुनीर की शब्द रचना जीत गांगुली ने संगीत से सजाया है और आवाज है हर दिल अजीज अरिजीत की।

0: और इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल। रिले कर रहे हैं लखनऊ
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
2: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस

0: समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल सम्पन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजना को स्वसमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आम जन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
1: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जुड़कर फेस कर सके।
0: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौधे रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
0: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गयी। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन होलकी ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावना के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है, इसके लिए शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दुना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के

0: किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया, जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
1: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 एनडीआरएफ की टीमें बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली, उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
0: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के 2 युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नवली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अखथ प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
2: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है, जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। अब समय है उर्दू कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ मैं शमसुल आरफीन और मेरे साथ हैं
2: आसिफ इकबाल।
1: सलाम अर्ज है।
2: आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम उर्दू अदब की 3 अजीम शख्सियात पर मबनी है, जिसका उनवान है लफ्ज़ों के 3 जादूगर, इब्ने इंशा, गोपी चंद नारंग और शहरयार।
1: सामिन, जून का महीना उर्दू अदब के लिए महज मौसम नहीं बल्कि यादों का एक दरीचा भी है। इस दरीचे से झांकने पर हमें एक मुसाफिर दिखाई देता है, जिसके शाने पर अल्फाज की

0: एक पोटली दिखाई देती है। आंखों में हैरत और लबों पर मुस्कुराहट लिए हुए वो दुनिया के शहरों, गलियों और वीरानों में घूमते हुए अपने सफर को अदब की चाशनी लगाकर दुनिया के रूबरू पेश कर देता है। उस मुसाफिर को हम इब्ने इंशा कहते हैं।
1: इस दरीचे के दूसरे किनारे पर एक मुहक्किक खड़ा है जो अल्फाज की गहराई में उतरता है और लफ्जों के मानी और उसके पस मंजर की गिराह खोलता है और उर्दू तनकीद को एक सिमत अता करता है। दुनिया उस मुहक्किक और नक्काद को गोपी चन्नारंग के नाम से जानती है।
0: इसी उर्दू अदब की नर्म जमीन पर एक और चेहरा उभरता है जो एक शायर का चेहरा है, खामोश, संजीदा और ख्वाबों में डूबा हुआ, जिसके अशार में तन्हाई भी है, मोहब्बत भी और जमाने की बेयकीनी भी। और क्या आप जानते हैं जमाना उस मशहूर शायर को शहरयार के नाम से जानता है?
1: सबसे पहले हम बात करते हैं इब्ने इंशा की। शेर मोहम्मद खान, जिन्हें दुनिया इब्ने इंशा के नाम से जानती है, उनकी यौम पैदाइश 15 जून 1927 को फिल्लौर, पंजाब में हुई।
0: जी हाँ, जून की गर्मी और जालंधर की एक गली में पैदा होने वाला वो बच्चा जो आगे चलकर इब्ने इंशा के नाम से मशहूर होने वाला है। पैदाइश मौसम गर्मा में, लेकिन उसकी फन तहरीर आवाम के दिलों में एक अजीब ठंडक महसूस कराती है।
1: इंशा जब सफरनामे लिखते हैं तो कारी को लगता है जैसे कोई दोस्त सफर के किस्से सुना रहा हो, और जब शायरी या मिजाह लिखते हैं तो उसमें एक अलग तरह का लुत्फ होता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, उनकी मशहूर गजल के चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, उस रोज जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, उस रोज जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या, उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सके पर छू न सके, जिसे देख सके पर छू न सके, वो दौलत क्या, वो खजाना।

0: दिल से जवाब देते थे। उनकी गुफ्तगू में इल्म भी होता और शगुफ्तगी भी। वो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का हौसला रखते थे, जो एक बड़े दानिश्वर की अहम निशानी समझी जाती है।
1: उनको मुतअद्दद एजाज से नवाजा गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान और पाकिस्तान का सितारा इम्तियाज काबिले जिक्र हैं।
0: उर्दू अदब का रोशन सितारा 15 जून 2022 को सरजमीन अमेरिका में हमेशा के लिए बुझ गया। दुनिया इस अजीम नक्काद को आज भी खिराज अकीदत पेश करती है।
1: सामईन, अभी हम जिक्र कर रहे थे गोपी चंद नारंग साहब का, जिन्होंने उर्दू अदब को नई फिक्री जहतें अता की। मगर उर्दू अदब की दुनिया सिर्फ फिक्र और तनकीद से नहीं बनती। इस दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो दिल के रास्ते रूह तक पहुंचती हैं। कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की आम सी बात को एक ऐसा मिसरा बना देते हैं कि वह लोगों की याददाश्त का हिस्सा बन जाता है।
0: सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। समय, ये वो शेर है जिसने न जाने कितने आशिकों की जबान पर जगह पाई, कितनी महफिलों को रौनक बख्शी और कितने दिलों को अपनी सादगी और हुनर से मशहूर किया। और सामेन, क्या आपको पता है इस शेर के शायर कौन है?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इस शेर के तख्लीककार हैं जनाब शहरयार साहब। ये वही शहरयार साहब हैं जिनका पूरा नाम अखलाक मोहम्मद खान था।
0: 16 जून 1936 को वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद पुलिस अफसर थे और नज्म व ज़ब्त के कायल थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी मुलाजमत अख्तियार करे, लेकिन शहरयार का दिल किताबों और अशार में लगता था। सामिन, कबल इससे कि शहरयार से मुतालिक मजीद गुफ्तगू करें, मुलाहिजा फरमाएं उन्हीं के चंद मशहूर अशार।
1: जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
0: स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।
1: सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। वालिद की सरकारी मुलाजमत थी, इसलिए उनका अक्सर ट्रांसफर होता रहता था, जिसकी वजह से उनका बचपन हरदोई, बुलंदशहर और कानपुर में गुजरा।
0: और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए और यहीं से उर्दू में एमए किया। उसके बाद यहीं शोबाए उर्दू में मुदर्रिस के फरायज अंजाम दिए। 1996 में प्रोफेसर बन के रिटायर हुए। अलीगढ़ उनकी पहचान बन गया।
1: अखलाक मोहम्मद खान का नाम उनके दोस्तों ने बदल दिया और शहरयार कहने लगे। वैसे शहरयार के मानी बादशाह होता है। वो अक्सर कहा करते थे कि नाम बड़ा जरूर है पर आदमी फकीर हूँ।
0: उनके शेरी सफर का आगाज 20 साल की उम्र में हुआ। 1956 में उन्होंने पहली गजल कही। 1960 से 1970 की दहाइयों में शहरयार के कई शेरी मजमुए मंजरे आम पर आए।
1: इसमें आजम 1965, सातवां दर 1969, हिजर के मौसम 1978 और ख्वाब के दर बंद हैं 1987 शाया हुआ। इन मजमुओं ने शहरयार को मकबूल शायर बना दिया और ख्वाब के दरबंद हैं पर तो बाकायदा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला।
0: इस तरह अदबी दुनिया में उनका मकाम मुस्तहकम हो चुका था, मगर शोहरत का एक नया दरवाजा खुलना अभी बाकी था। दरअसल बॉलीवुड में जब मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म गमन बनाई तो उसके नगमे शहरयार से लिखवाए। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई।
1: और फिर साल 1981 में फिल्म उमराव जान आई। इस फिल्म ने शहरयार को घर घर पहुंचा दिया।

0: जी हाँ, ये नगमा इतना खूबसूरत है कि अपने जमाने में इसने धूम मचा दिया। और मजेदार बात यह है कि आज भी ये नगमा लोगों की जबान पर मचल जाता है और वो गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं।
1: इस मशहूर शायर को अदबी खिदमात के लिए बहुत सारे एजाजात से नवाजा गया, जिसमें सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ एजाज अता किया गया।
0: उम्र के आखिरी बरसों में सेहत के मसाइल ने उन्हें घेर लिया, मगर कलम और फिक्र का रिश्ता बरकरार रहा। उनके अशआर मुसलसल पढ़े और सुने जाते रहे।

0: 13 फरवरी 2012 का दिन उर्दू अदब के लिए बेहद खसारे का दिन साबित हुआ।
1: जी हाँ, 13 फरवरी 2012 के दिन अलीगढ़ में अदब का दरख्शां चराग बुझ गया। शहरयार 75 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम लफ्ज़ों के तीन जादूगर, इब्ने इंशा, गोपी चन्नारंग और शहरयार। कैसा लगा आपको? अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
1: आप अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन
0: और आसिफ इकबाल को दें इजाज़त।
1: आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं मनीषा निरखी। पहले सुनिए ये संदेश और फिर सुनवाते हैं मनीषा निरखी के स्वर में सुगम संगीत का कार्यक्रम।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना था मनीषा निरखी के स्वर में गीत, और अब इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार थी मनीषा निरखी। आपने सुने इनके स्वर में गीत और भजन। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को है। हम आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मूज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे।

0: होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा

0: अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी सुनने वालों का स्नेहिल अभिवादन कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में, और मैं हूं आपकी कार्यक्रम प्रस्तोत्री मोना पांडे। कहते हैं किसी वृक्ष की सबसे मजबूत शाखाएं वे होती हैं जिन्होंने सबसे अधिक आंधियां देखी हों। ठीक उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग जीवन के वे वृक्ष हैं जिन्होंने संघर्षों की धूप, जिम्मेदारियों की बारिश और अनुभवों की आंधियां

झेलकर आने वाली पीढ़ियों को छाया दी है। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिन हाथों ने कभी हमें चलना सिखाया, आज वही हाथ सहारे की प्रतीक्षा में है। जिन आंखों ने हमारे सपनों को आकार दिया, आज वही आंखें अपनों की एक झलक के लिए कभी कभी तरस जाती हैं। इसी संवेदनशील विषय को लेकर आज का हमारा कार्यक्रम है, अनुभव की पूंजी और उपेक्षा का दर्द। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, घर बड़ा हो या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उसमें बुजुर्गों की दुआएं बसती हैं या नहीं। जिन कंधों पर बैठकर दुनिया देखी थी कभी, आज वही कंधे सहारे की राह देखते हैं।

0: इतने यशस्वी पांडे हैं। मुझे अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ बहुत समय बिताना अच्छा लगता है। वह मुझे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं और खेल खिलाते हैं और बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। वह उनके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश रहती हूँ। वह मेरे को जब मैं उदास रहती हूँ तब मुझे उनकी गोदी में बैठकर बहुत अच्छा लगता है।
1: ये थी नन्ही आद्विता, जिन्होंने हमसे अपने विचारों को साझा किया। देखा आपने, बच्चे कितने खुश होते हैं अपने दादा दादी नाना नानी की गोद में, वृद्धों के सानिध्य में। तो यही तो हम कहते हैं कि बुजुर्ग वो शाखाएं हैं जो हमें छाया देती हैं। हमें उनकी बातों को आत्मसात करना चाहिए और उनकी बातें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। श्रोताओं, हर वर्ष 15 जून को यानी आज के दिन विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस अर्थात वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज यानी INPEA द्वारा की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का वातावरण तैयार करना, परिवार और समाज को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराना। वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा नहीं है श्रोताओं। जब किसी बुजुर्ग की भावनाओं की अनदेखी की जाती है ना, तब उनकी बातों को जैसे महत्व जब नहीं दिया जाता है, उन्हें जब अकेला छोड़ दिया जाता है, जब उनकी आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है, तो ये भी दुर्व्यवहार का ही एक रूप है। कई बार उपेक्षा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है।

और जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम चर्चा करते हैं किसी विषय पर, साथ ही आपको गीत संगीत का भी आनंद दिलवाते हैं। तो आइए, अब समय हो चला है एक गीत सुनने का।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

उम्मीद करती हूँ श्रोताओं आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। भारतीय परंपरा में बुजुर्गों को सदैव सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। एक सुभाषितानी के अनुसार अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उनकी सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश और बल सभी कुछ बढ़ते ही जाते हैं। ये केवल श्लोक नहीं है श्रोताओं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का आधार है। अब समय तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। तकनीक ने दूरियों को कम किया है लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ा दी हैं।

0: सुनय शुक्ला है और मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज के सभी लोगों से मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों को केवल परिवार का सदस्य न समझें, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सबसे अनमोल पूंजी माने। जिन माता पिता और बुजुर्गों ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके हमें आगे बढ़ाया है, हमें प्यार दिया है, उन्हें जीवन की संध्या में उपेक्षा नहीं, सम्मान और अपनापन मिलना चाहिए। याद रखिए, उनके चेहरे की मुस्कान किसी भी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। आइए इस विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने घर और समाज में हर बुजुर्ग को प्रेम, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाएंगे। नमस्कार।
1: ये थे सुमेश शुक्ला। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए आज इस खास दिवस के अवसर पर। और अब एक गाने की बारी।

श्रोताओं, बुजुर्गों के पास अनुभव है, समय है, स्नेह है, लेकिन कई बार उनके पास सुनने वाला कोई नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए लगा दी, एक माँ जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार को संवार दिया और अब जीवन की संध्या में उन्हें केवल दो शब्द चाहिए, आप कैसे हैं। लेकिन जब ये भी ना मिले तब उपेक्षा का दर्द शब्दों से परे हो जाता है। उम्र भर धूप में चलकर जो छांव देते रहे, आज वही लोग अपनों के गांव के पास पराए हो गए हैं। और श्रोताओं, आप सब इस बात से तो जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि बुजुर्ग घर का वो दीपक हैं जिसकी रोशनी कम भले हो जाए पर दिशा दिखाना कभी नहीं छोड़ती। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसकी नींव पिछली पीढ़ियों ने रखी है। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, वे चलते फिरते इतिहास हैं, जीवन के शिक्षक हैं, अनुभवों के भंडार हैं।

0: हमने बात की एक वरिष्ठ नागरिक से, आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस विषय पर।
1: मैं संजय मेहरोत्रा उत्तर मध्य रेलवे से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं वरिष्ठ नागरिकों की आज की स्थिति में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के समय में पैसा मुख्य विषय हो गया है। पारिवारिक रिश्तों की मिठास, इज्जत एवं बंधन धन के आगे फीका पड़ता जा रहा है। इस बदलते समय में सबसे अधिक वृद्धजन प्रभावित हो रहे हैं। नई पीढ़ी के सामने दादा दादी, नाना नानी जैसे रिश्ते फीके पड़ते जा रहे हैं। पारिवारिक ढांचा टूटता जा रहा है। जिन वृद्धजनों ने अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में उच्च स्थान पर बैठने लायक बनाया, वही बच्चे अपने माँ बाप, दादा दादी एवं नाना नानी जैसे रिश्तों से उचित व्यवहार नहीं करते, वरन पैसे कमाने की दौड़ में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि इन महत्वपूर्ण रिश्तों को भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। यह कटु सत्य है कि संतान अच्छी, योग्य एवं प्रगतिशील हो जाती है तो भी माँ बाप को अकेले ही रहना पड़ता है। बच्चे या तो बड़े शहरों में या विदेश में सेटल हो जाते हैं, और यदि बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो माँ बाप के जीवन को ही खतरा हो जाता है। इस तरह की कुछ घटनाएं आजकल समाचार पत्रों में के माध्यम से समय समय पर पढ़ने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर आज की पीढ़ी की आधुनिकता एवं प्रगतिशीलता वृद्धजनों के लिए अभिशाप से बनती जा रही है।
0: आपने सुना संजय मल्होत्रा जी को, और आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश है आज की युवा पीढ़ी को

श्रोताओं कहा भी गया है न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः, अर्थात वो सभा सभा नहीं है जहाँ अनुभवी वृद्ध उपस्थित ना हो। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। हम कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे प्रतिदिन कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बात ध्यान से सुनें, डिजिटल युग में उनकी सहायता करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में उनकी भी राय लें, बच्चों को दादा दादी और नाना नानी से जोड़ें। याद रखिए, बुजुर्गों को हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आवश्यकता होती है सम्मान की, अपनत्व की और साथ की। कहा जाता है कि एक युवक अपने वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसके बेटे ने पूछा, पापा दादाजी को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? उसने कहा, वृद्धाश्रम। बेटे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, ठीक है पापा, लेकिन उसका पता संभाल कर रखिएगा, जब आप बूढ़े होंगे ना तो मुझे भी काम आएगा। बस इतना सुनते ही बेटे के पिता की आंखें भर आईं और वो पिता को वापस घर ले आया। कभी कभी बच्चे भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, समय का एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। आज हम युवा हैं, कल हम भी वृद्ध होंगे, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानवता का सबसे सुंदर रूप है। समापन से पहले एक मंगल कामना करना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। जिन हाथों ने थाम कर चलना सिखाया, उन हाथों को कभी अकेला मत छोड़िए। अनुभव के इस अनमोल पूंजी को उपेक्षा की धूल में खोने मत दीजिए। इसी संदेश के साथ विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सुरक्षा देंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज और आज की प्रस्तुति थी प्रस्तोता कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था अभय कांत तिवारी ने और प्रस्तोत्री थी मोना पांडे।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं बचौलाल यादव और साथी, और रीता देवी साथी शैलेश कुमार शर्मा। पहले सुनते हैं ये संदेश और फिर सुनवाएंगे लोकगीत इनके स्वरों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम। पहले सुनिए बचौलाल यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। अभी आपने सुना था बचाऊ लाल यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत, और अब हम इनके स्वर में सुनवा रहे हैं कहरवा।

अभी आपने सुना बचाऊ लाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं रीता देवी के स्वर में लोकगीत। पहले सुनते हैं देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीत, कलाकार हैं रीता देवी। अभी आपने सुना था इनके स्वर में देवी गीत, अब हम आपको सुनवा रहे हैं रीता देवी के स्वर में ये झूमर।

अभी आपने शैलेश कुमार वर्मा के सुर में, क्षमा करें, शैलेश कुमार शर्मा के सुर में ये लोकगीत सुना। इसी के साथ आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

आज दास्तां एक ऐसी गायिका की जिसकी आवाज की शोखी और शरारत और अजब परिपक्वता ने इस गायिका को बना दिया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक। नाम है साधना सरगम। एक ही कलाकार का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार।

अभी आपने सुना साधना सरगम की आवाज़ में वो गाना जिस गाने ने पहचान दिलाई थी इस गायिका को बॉलीवुड में। जन्म 7 मार्च सन 1969 को हुआ था, सवाई गंधर्व संगीत इनका, और इन्होंने शुरुआत में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में साधना सरगम ने अपनी आवाज़ का जोर दिखाया था। आपकी उम्र तब मात्र 4 की थी। इन्होंने दूरदर्शन पर अक्सर सुनाई देने वाला गाना सूरज एक चंदा एक तारे अनेक गीत भी गाया। इस गाने को कंपोज किया था बसंत देसाई साहब ने। साधना सरगम का जन्म धाबोल परिवार में हुआ था। यह परिवार संगीतमय परिवार रहा है। स्थान रत्नागिरी जिला, राज्य महाराष्ट्र। आपकी माताजी नीला घाड़ेकर भी एक शास्त्रीय गायिका थी और बतौर म्यूजिक टीचर भी काम करती रहीं, और उनका सारा प्यार, उनकी संगीत साधना का सारा असर और उनका आशीर्वाद सब एक होकर उतरा गायिका साधना सरगम पर। और फिर क्या था, सब पर ऐसा नशा, ऐसा खुमार छाया इस मीठी सी शोक शरारती आवाज का कि सब साधना सरगम के दीवाने हो गए।

साधना सरगम की माता जी जाने माने कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर अनिल मोहिले साहब को जानती थी। उस समय अनिल मोहिले जी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंज करने का काम कर रहे थे। तब साधना सरगम को कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में शामिल किया गया। ये मात्र 10 बरस की थीं जब इन्हें केंद्र सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी गई और उस ग्रुप में रहते रहते कल्याण जी आनंद जी भाई इनकी आवाज़ से, इनकी साधना से और इनके अंदाज से इतने खुश हुए कि धीरे धीरे आप उनकी एक चहेती गायिका बनती गईं। और फिर क्या था, उनके संगीत निर्देशन में आपको गाने गाने का अवसर भी मिलने लगा।

केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति मिलने पर साधना सरगम ने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। वो संगीत के हर पहलू को बारीकी से जानना समझना चाहती थी। और जब बात करें फिल्मों में गायन की, तो सरगम ने गुजराती फिल्म कंकु पगली से पार्श्व गायन में पदार्पण किया। उनका पहला हिंदी गीत फिल्म रुस्तम का था और ये गीत रिकॉर्ड हुआ, लेकिन रुस्तम फिल्म की रिलीज में काफ़ी वक्त लग गया और उससे पहले ही उनकी फिल्म 1982 में विधाता रिलीज़ हो गई, जिसमें आपने एक गीत गाया था और आपके साथ सहयोगी स्वर या कहें आपके साथ जो दूसरे स्वर थे वो किशोर दा और अलका याग्निक के थे। साधना सरगम ने तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक, करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में गीत गाया और ये ऐसी फिल्में थी जिसमें आप एकमात्र महिला गायिका रहीं। 1986 में आई फिल्म जाबांज के लिए आपको

आपकी आवाज़ को नोटिस किया गया और उसके बाद खून भरी मांग आई और सरगम ने अनु मल्लिक, आर डी बर्मन साहब, आनंद मिलिंद साहब जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। आपकी जो संगीतकार जो थे उनमें जो काफ़ी सफलता आपको मिली वो राजेश रोशन जी के संगीत निर्देशन में जो फिल्में थीं उन उसके लिए आपको मिली। आपने जुर्म जुर्म का वो गीत तो आपने सुना ही होगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, और कृष्ण कन्हैया, दरिया दिल, आसमान से ऊंचा जैसी अनेक फिल्मों में आपने गाना गाया, और साथ ही साथ आपने महाभारत जो सीरियल था आपने हमने सबने देखा था, बी आर चोपड़ा जी का, उसमें भी साधना सरगम ने गीत गाए थे। कल्याण जी, आनंद जी के साथ तो फिर हमने आपको बताया ही कि उनके साथ उनका सफ़र कैसा रहा, और जो नाम आपका शुरू था, शुरुआत में जो आपको नाम माता पिता से मिला था, साधना घाड़ेकर, उस नाम में इसी बॉलीवुड में माया नगरी में संगीतकारों ने आपके नाम से घाड़ेकर हटाकर आपके नाम के साथ जोड़ दिया सरगम, क्योंकि इस तरीके से आप सबके दिलों पर संगीत का पर्याय बनकर चल रही थी। 1992 की बात है, फिल्म विश्वात्मा के लिए आपने जो गीत गाया जिसे हमने आपको शुरुआत में सुनवाया था, सात समुंदर पार, ये गीत चार्टबस्टर बन गया, और उसी वर्ष उन्होंने दीवाना में तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जैसा गीत गाया। और आशिकी के गाने तो आप सब सुनते ही हैं और वो गीत आपको कितने मधुर लगते हैं, इन गानों में साधना सरगम ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा, गाने सुपरहिट थे। और दिव्या भारती के लिए उनकी आवाज़ एक पहचान के रूप में बन गई, जैसे बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि कुछ आवाज़ें किसी कलाकार की पहचान बन जाती हैं, वैसे ही साधना सरगम की आवाज़ दिव्या भारती के लिए एकदम पसंद की गई। अगर दिव्या भारती की असामयिक मृत्यु नहीं होती तो सरगम उनकी आवाज़ बनी रहती हमेशा के लिए। इसके बाद 1992 में आपकी फिल्म जो जीता वही सिकंदर आई, और आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई, आपने उदित नारायण, कुमार सानू जैसे स्थापित कलाकारों के साथ युगल गीत गाए, और साधना सरगम की सरगमी आवाज़ लोगों के कानों में धीरे धीरे घुलती चली गई।

साधना सरगम को चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। साधना सरगम को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। बहुत सारे पुरस्कार अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा दिए गए, तमाम सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की जाए तो 2002 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में आपको सम्मानित किया गया तमिल फिल्म में गायन के लिए। और फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात की जाए तो 1988, 2000, 2001, 2002, 2004 में, 2008 और 9 में आपको पार्श्व गायन के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। साथ ही 2007 में आपको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। साधना सरगम आज भी संगीत के क्षेत्र में एक्टिव हैं, तमाम मंच गायन करती हैं और पार्श्व गायन भी जारी है, और उनकी आवाज़ की जो शोखी है वो आज भी उनके श्रोताओं को आनंद से भरती रहती है। साधना सरगम के और उज्जवल भविष्य और करियर के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

अभी आप मशहूर पार्श्व गायिका साधना सरगम पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए मैं था आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र, और इस कार्यक्रम को आपकी खिदमत में प्रस्तुत किया दीपक राय जी ने। अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म गुप्त के इस गाने से, जिसे आवाज दी है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरी आवाज अलका याग्निक की है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत विजू शाह का।

लीजिए सुनिए फिल्म जुर्म से ये गाना, जिसे लिखा है इंदिवर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गदर 2 से। सईद कादरी के बोलों को सुरों में पिरोया है मिथुन ने, आवाजें हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की।

लीजिए सुनिए फिल्म साफी से ये गाना, आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की। रश्मि विराग के बोलों को सुर में पिरोया है जावेद मोहसिन ने।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से है ये कार्यक्रम का आखिरी गाना। रविवार के बोल हैं, संगीत विजु शाह का, आवाज उदित नारायण की है।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3
1: मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से

0: का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी।

0: चार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. A report from our correspondent.
3: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India, but to the entire global

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10:55 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का ख्याल गायन सुनिएगा दिन में 12:15। रात 10:30 पंडित अजय पोहनकर का राग मारू बिहाग में शास्त्रीय गायन होगा। अपने फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत नेहा मिश्रा की वार्ता होगी, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कितनी सफल हुई दुनिया। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 2:30। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे 5:00। युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी लेकर के आएंगे 5:15। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुनेंगे 5:15। इसके अंतर्गत लोक भाषा कविता पाठ होगा, लोक कवि होंगे अनूप उपाध्याय, साथ ही फूलचंद्र शर्मा और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। डॉक्टर कुबेर नाथ राय का रचना संसार, प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की ये वार्ता सुनवाएंगे आज के हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीत भजन का आनंद लीजिएगा। शाम 7:45 पर स्वर अरुण गुलवाड़ी का होगा। कानून और हम कार्यक्रम होगा रात 8:30। इसके अंतर्गत सुनिएगा वार्ता बाल श्रम विखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगे उत्कर्ष शुक्ल। गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशा के साथ रात 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। दीपक यादव पुत्र छोटे लाल यादव निवासी 65A हरवारा थाना धूमनगंज प्रयागराज से सूचित करते हैं कि वंदना यादव पत्नी दीपक यादव विगत 6 अप्रैल 2026 को रात 8:15 बजे से हरवारा धूमनगंज प्रयागराज से लापता हैं। लापता की उम्र लगभग 30 वर्ष है। चेहरा गोल है, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, रंग गेहुआ है, बाल काले हैं। घटना के वक्त इन्होंने साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। दीपक यादव पुत्र छोटे लाल यादव निवासी 65A हरवारा थाना धूमनगंज प्रयागराज। दूसरी सूचना थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज से राम कैलाश पुत्र शिवनाथ की ओर से है। आप सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री कोमल विगत 6 अप्रैल 2026 को दिन के 1 बजे से ग्राम समय गेहूं थाना नवाबगंज प्रयागराज से लापता हैं। लापता की उम्र लगभग 22 वर्ष है। ऊंचाई 5 फीट है। आंख नाक औसत हैं, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है। घटना के वक्त इन्होंने सफ़ेद रंग का सूट सलवार पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। राम कैलाश पुत्र शिवनाथ थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती कमला बोस का राग धानी में ख्याल गायन।

विलंबित रचना तीन ताल में है और बोल है लड़े लड़े चुनरिया, लादे लादे चुनरिया पिया धानी रंग की। और द्रुत रचना भी तीन ताल में है, बोल है तोरे मोरे मन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का रागधानी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री विनोद कुमार मिश्रा, हारमोनियम पर थे श्री अनिल कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप, और अगले 30 मिनट हैं हम आपके साथ आपके पसंदीदा गीतों को लेकर। तो पहले तो शुरुआत करेंगे इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ कि कभी कभार ये दिखावा करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी कश्ती में छेद है और तुम्हारी कश्ती डूबने वाली है, ताकि उस समय वो तमाम लोग छलांग लगा दें जो तुम्हारे साथ रहने के हकदार नहीं है। जी हाँ, लोगों की असलियत तुरंत सामने आ जाती है कि भाई जिस कश्ती पे वो सवार है वो तो डूबने वाली है, तो पहले तो अपनी हम जान बचाकर भागें। करूंगा बंद सभी वापसी के दरवाजे, मैं चेहरे देख तो लूं एक बार जाने वालों के। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है लापता लेडीज, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, नई दिल्ली से

ईटी दीवाना, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल, परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का लापता लेडीज फिल्म का ये गाना।

किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी मनुष्य के चरित्र को सचमुच में पढ़ना है तो उसके साथ किसी लंबी यात्रा पर निकल जाइए, क्योंकि यात्रा के समय ना आपके साथ उसकी पोस्ट का, उसके पद का प्रभाव चलता है, ना ही आर्टिफिशियल शब्द, क्योंकि वहाँ आती है थकान, वहाँ आती हैं असुविधाएं, योजनाएं विफल भी होती हैं, और तभी मनुष्य का असली स्वरूप सामने आ जाता है, जिसे वो सामान्य दिनों में सभ्यता और शिष्टाचार के आवरण से ढांक कर रखता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि रोज़मर्रा की लाइफ में जिस तरह से वो आर्टिफिशियल शब्दों का प्रयोग करके, जिस तरह से बहुत ही मैनर्स वाला बन के हमारे सामने आता है, उसकी असलियत उसी समय कुछ दिन की यात्रा साथ करने से खुल जाती है। क्योंकि यात्राएं केवल स्थानों की दूरी नहीं नापती, वो मनुष्य की परतें भी खोल देती हैं। तो चलिए, एक ऐसी ही यात्रा पे हमें ले जा रहा है कार्यक्रम का ये गीत कि चल कहीं दूर निकल जाए, दूसरा आदमी फिल्म का ये गाना, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और इस गाने की फरमाइश की है हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, आर्य नगर से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस जंघैल, आयुष, आयुषी, नंदिनी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का दूसरा आदमी फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, किताबों में रखे हुए सूखे फूल भी बहुत अजीब होते हैं। ना उनमें अब पहले जैसी खुशबू होती है और ना ही रंग पहले जैसा रहता है। फिर भी कभी उन्हें फेंकने का मन नहीं करता, शायद इसलिए कि हम फूल नहीं संभालते हैं, हम उस दिन को संभालते हैं जब वो फूल किताबों के बीच रखा गया था। अजीब है, कुछ चीज़ें अपनी वजह से नहीं, अपनी याद की वजह से बची रहती हैं। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश हमें की है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विनी और मंगला बेन शाह। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आप सब सुनना चाहते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। ये कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को दिन में 12:30 बजे प्रसारित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा फोन नंबर भी आपको याद होगा, लेकिन एक बार फिर से नंबर है 8004926250, 8004926250। इस नंबर पर आप अपने संदेश और अपनी पसंद के गाने को लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। पेड़ कभी जल्दी में नहीं होते, धूप आए बारिश रुके या मौसम बदल जाए, वो हर चीज धीरे धीरे होने देते हैं। ना पत्तों को झड़ने से रोकते हैं, ना ही नए फूलों को उगने से। अजीब है प्रकृति को ठहरना आता है और हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, यही तो फर्क है हम में और प्रकृति में। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता गीत आ रहा है जिसकी फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुलवानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा। डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लखनऊ से वारिस अली खान, शहनाज खान। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का जब वी मेट फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: चार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7

0: शिखर सम्मेलन में या भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण

0: इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
2: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
1: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.

0: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमायां तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उन्वान से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि ये वो एहसास है जो हमें अपनों के साथ आपस में बांधे रखता है। ये वो एहसास है जो रिश्तों को जीवंत रखता है, ताकि अपनों के साथ हमारी यादें भी बनी रहें और हमारे प्यारे से रिश्ते की डोर मजबूत रहे।
1: क्यों? क्योंकि ये प्यारे से रिश्ते कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वक्त और कुछ इज्जत। तो आज के इस सफर की खूबसूरत बनाने के लिए आज के गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपकी दो सखियां, मैं रोशनी
0: और मैं रचना, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
1: वड़कम, सत श्री अकाल, आदाब। जिनकी भूल पर हम कई बार झुंझला जाते हैं, उन्होंने कई सैकड़ों बार हमारी बात को बड़े धैर्य से सुना था, यानी जन्म से लेकर जब जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने बड़े प्यार और मनुहार से हमें संभाला।
0: याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स यानी हमारे बड़ों ने जब हम रास्ता भटक जाते थे रोशनी, तो गुस्सा ना करके वो हमें संभालते थे।
1: हाँ।
0: हमारी उंगली पकड़ लेते थे। तो भाई, अगर अब जरूरत उनको है तो हमारी है, तो आज हमें उनकी उंगली कस कर पकड़ने की जरूरत है, ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो।
1: हाँ, हमारा गुस्सा उन्हें तोड़े नहीं, बल्कि प्यार की भावनाएं उन्हें जोड़ें। हमारी मुस्कान, हमारा ममतामय स्पर्श, प्यार से पगी हमारी आवाज़ उनकी बीमारी को दवा की तरह और स्वस्थ करे, बचा ले। हमारी सही देखभाल हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को और सहज बना दे।
0: तो भाई, हर वर्ष 15 जून को बहनों हम विश्व में विश्व

0: स्वर दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत रोशनी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्धजनों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। और देखो, इसका मुख्य उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि वृद्धजनों के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। जैसे कि बुजुर्गों का दुर्व्यवहार क्या है कि जैसे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या आर्थिक नुकसान देना, उनके संग मारपीट, धक्का या शारीरिक चोट या अपमान करना या उपेक्षा करना या कहीं कहीं अकेला छोड़ देना, आर्थिक शोषण जैसे धन संपत्ति या पेंशन का उनकी अनुचित उपयोग करना है ना, और भोजन, दवा, देखभाल और आवश्यक सुविधाओं से उन्हें दूर रखना। हर जगह ऐसा नहीं होता रोशनी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है और कहीं कहीं परिवार और समाज से भी उनको दूर रखा जाता है।
1: इसीलिए बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा, स्नेह के लिए उन्हें जागरूक करना आज बहुत ही आवश्यक कदम हो गया है, क्योंकि आज की बदलती लाइफस्टाइल और संयुक्त परिवारों का विघटन, बढ़ती व्यस्तता और संतान की बदलती सोच के कारण बुजुर्ग कहीं कहीं अकेलेपन के शिकार हो गए हैं और स्नेह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हम और आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए एक बोझ नहीं है, बल्कि हमारी अमूल्य धरोहर है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, और इसी पर भारत सरकार ने भी सुरक्षा, उनकी कल्याण के लिए कई प्राविधान किए हैं।
0: बिल्कुल, वो हमारे एक वृक्ष जैसे हैं, जैसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों और उत्तराधिकारियों को बुजुर्ग की देखभाल करना कानूनी रूप से आवश्यक है, और इसके लिए विभिन्न पेंशन सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं।
1: टाइम बैंक भी एक ऐसी ही क्रांतिकारी अवधारणा है, जहां रुपया पैसा नहीं बल्कि समय ही उसकी मुद्रा होती है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और देखभाल के संसाधनों की कमी से निपटने के लिए ये म्यूचुअल सपोर्ट का सबसे बेहतरीन मॉडल साबित हो रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी बुजुर्ग की मदद करके अपने खाते में घंटे जमा कर सकता है और भविष्य में बूढ़ा होने पर या बीमार होने पर उन घंटों को अपनी देखभाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वाकई दीदी कितनी अच्छी बात है ये टाइम बैंक की, जब आज एकल परिवार का कॉन्सेप्ट है, और ऐसे में जब कई बार ऐसे केसेस आए कि बुजुर्ग, कई ऐसे केसेस न्यूज में हमने सुने कि बुजुर्ग माँ बाप जो है वो कई दिनों तक वो उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी सड़ रही होती है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। तो ऐसे में ये जो बैंक बना है टाइम बैंक, ये बहुत ही बेहतरीन इन बुजुर्गों के लिए साबित होगा, और भारत में भी टाइम बैंक
0: और देखो ये हमारा भी जो है अंदर से होना चाहिए कि अगर हमारे आसपास इस तरह का वातावरण या कुछ हमको देखने को मिल रहा है तो हमको तुरंत उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए मदद के लिए, ना कि बैठकर तमाशा देखना चाहिए कि नहीं अभी इनके ही परिवार का व्यक्ति आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते।
1: बता दें दीदी कि भारत में भी टाइम बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 2019 में हो चुकी है, और हाल ही में केरल राज्य में भी वरिष्ठ नागरिकों के अकेलेपन को दूर करने के लिए टाइम बैंक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये एक अच्छी सोच है जो कि जापान और अमेरिका के बाद भारत जैसे देशों में भी अपनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, तो भाई हमें अपने बुजुर्गों को परिवार के निर्णयों में भी शामिल करना चाहिए। उनके अनुभव और विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए। रोज उनके साथ रोशनी हमको संवाद करना चाहिए, चाहे हमारे पास टाइम कितना कम हो लेकिन टाइम निकालना चाहिए, उनका हालचाल पूछें, चाहे हमारे अंदर कितनी भी व्यस्तता हो उसके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप एक मैनेजमेंट टाइम टेबल बना के चलेंगे ना कि इस वक्त हमें इनके लिए ये करना है, इस वक्त इनके लिए ये करना है, तो कभी भी जो है आपको झुंझलाहट नहीं आएगी और ना अनदेखी कर पाएंगे। उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, संवेदनशील व्यवहार, यानी आप जितने भी थके हों पर प्यार से उनके संग व्यवहार करें। देखिए करने में कभी कभी होता है कि हम दिन भर थक जाते हैं तो हमें झुंझलाहट आती है, पर वो झुंझलाहट आप पहले का सोच लीजिए कि इन्होंने तो हमारे लिए कभी झुंझलाहट नहीं की, तो कहीं आप किसी भी बुजुर्ग के संग दुर्व्यवहार हो रहा हो, जैसा कि अभी तुमने बताया था कि कई दिन पड़े रह गए, गिरे पड़े रह गए या चोट लग गई, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, तो भाई अगर आपके आसपास इस तरह का व्यवहार हो रहा हो तो उचित जगह पे आप शिकायत करके उनकी सहायता

0: सहायता करके उनका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था स्वाभाविक चरण है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन इस अवस्था में वो जरूर पहुंचता है। ऐसे में हमें स्वस्थ समाज को बनाना होगा जहां पर प्रत्येक बुजुर्ग को सम्मान सुरक्षा इसने प्राप्त हो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान भी होते हैं, क्योंकि जितना पुराना वट वृक्ष होगा छाया उतनी ही शीतलता हमें प्रदान करता है ना रोशनी। वैसे ही हमारे बुजुर्ग हम हमेशा बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो हमारे वट वृक्ष हैं। इसलिए आइए संकल्प लें कि हम अपने माता पिता बुजुर्गों को केवल लंबी आयु ही नहीं बल्कि सम्मान देंगे, सुरक्षित जीवन देंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार देंगे, क्योंकि सम्मान सुरक्षा और स्नेह बुजुर्गों का अधिकार है, बल्कि उपकार नहीं, दया नहीं।
1: बिल्कुल, समय के इस चक्र में आज का युवा ही कल का बुजुर्ग है और कल की जमा पूंजी आज का निवेश। टाइम बैंक जैसी आधुनिक अवधारणाएं हमें ये सिखाती हैं कि समाज पैसों से नहीं बल्कि आपसी सहयोग और मानवीय संवेदनाओं से चलता है। कानून अपनी जगह काम कर सकता है, तकनीक अपनी जगह मदद कर सकती है, लेकिन जब तक हमारे दिलों में बुजुर्गों के प्रति सच्ची संवेदना नहीं होगी तब तक कोई भी बदलाव अधूरा है। सम्मान सुरक्षा और स्नेह हमारे बुजुर्गों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब उनका आज सुरक्षित होगा तभी हमारा कल समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: वाकई रोशनी रब है बागवा,
1: एकदम मार्मिक
0: हमारे
1: सा गीत जो है।
0: मार्मिक सा गीत है। और देखो कहीं कहीं इस तरह का, हर जगह नहीं है लेकिन कहीं कहीं इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है, आस पड़ोस इधर उधर। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे माता पिता हमारे बुजुर्ग भगवान तुल्य हैं, अगर उनको हम रिस्पेक्ट देंगे ना तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। उनकी जो दुआ होती है, उनकी जो मतलब आशीर्वाद निकलता है ना,
1: बिल्कुल
0: वो हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी होता है कि हम मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। तो इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करें। और क्योंकि वो इस गाने में एक एक चीज बताई गई कि सूरज की पहली किरण भी वो हमको दिखाते हैं, जैसे सूर्य निकलता है रोशनी हमारे जीवन में आती है, तो हमारे माता पिता से ही हमारे जीवन में रोशनी
1: हाँ, यानी
0: आती
1: जो
0: है।
1: पेड़ हमें जीवन भर छांव देता है, धूप ढलने पर उनकी जड़ें हमें काटनी नहीं चाहिए।
0: नहीं काटनी
1: तो इस
0: चाहिए,
1: पेड़ को हमें संभालना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, उन्हें सुरक्षा
0: हरा
1: देना
0: भरा
1: है
0: रखना है
1: और
0: हमेशा।
1: स्नेह देते रहना है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सखियों, घर की चौखट से बाहर निकलकर जब हमारी आधी आबादी यानी महिलाएं कदम बढ़ाती हैं तो एक नया दौर शुरू होता है। आज दुनिया का हर बड़ा मंच एक ही सुर में बात कर रहा है, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता यानी वर्क प्लेस जेंडर इक्वलिटी। क्या आज वाकई महिलाओं को काम के समान अवसर, समान वेतन और शीर्ष पदों पर बराबर की हिस्सेदारी मिल पा रही है, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है? दुनिया भर में चल रही इसी बहस और इस अहम बदलाव के हर पहलू को समझने के लिए आइए सुनते हैं वार्ता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता। वार्ताकार है नेहा मिश्रा और प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी की।
2: लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं को नौकरी के अवसर, वेतन, पदोन्नति, संसाधन और निर्णय की प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलना। यह सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा नहीं, असली समानता तब है जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसकी योग्यता, मेहनत और परिणाम से हो। भारत में कार्यालयों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को कार्यबल में समान भागीदारी देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि प्रगति के बावजूद समान वेतन, नेतृत्व भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व और कार्य जीवन संतुलन के स्तर पर अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023 में लगभग 37% थी, जो दुनिया के औसत 47% से काफी कम है। यानी काम करने योग्य 3 में से 2 महिलाएं कार्यस्थल से बाहर हैं। इसका असर सीधा देश की जीडीपी पर पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत लैंगिक अंतर खत्म कर दे तो 2025 तक जीडीपी में 700 बिलियन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण कारक है। नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट फॉर्म इंटेंट टू इंपैक्ट कार्यस्थलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति रोड मैप प्रस्तुत करती है, जिसके लिए लगभग 14.5 करोड़ महिलाओं को कार्यबल में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, लैंगिक समानता और सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर वैश्विक औसत से काफी कम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार यह दर मात्र 25 से 30% के आसपास है, जबकि पुरुषों की 80% से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई

जाए तो जीडीपी में 2 से 3% की अतिरिक्त वृद्धि संभव है। वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में अधिक अवसर प्रदान करना होगा। इसमें महिलाओं का अनुपात 43% है, लेकिन कार्यबल में केवल 27%। यह असमानता न केवल आर्थिक हानि का कारण है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी प्रभावित करती है। लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति, जिसे लैंगिक विकास सूचनांक जैसी रैंकिंग पर अपनी स्थिति से मापा जाता है, आर्थिक विकास की काफी तेज दरों के बावजूद निराशाजनक रही है। पिछले एक दशक में जबकि भारतीय सकल घरेलू उत्पादक में काफी वृद्धि हुई है, वहीं महिला श्रम बल की भागीदारी में 34% से 27% तक की बड़ी गिरावट है। पुरुष महिला वेतन अंतर 50% पर स्थिर रहा है। विकास के साथ शिक्षा और समृद्धि आती है और पारंपरिक संस्थानों और सामाजिक रूप से निर्धारित लिंग भूमिकाओं के पालन में संभावित गिरावट आती है, जो महिलाओं को पीछे रखती है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के ढांचे के भीतर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से महिलाओं के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण में कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है। भारत में लैंगिक समानता का मौजूदा कानूनी प्रावधान, भारत के संविधान ने लैंगिक समानता के मामले में महिलाओं के लिए चीजों को थोड़ा आसान बना दिया है। संविधान में लैंगिक समानता शब्द का उल्लेख इसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। संविधान न केवल महिला सशक्तिकरण की गारंटी देता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में समानता और सशक्तिकरण के विभिन्न उपायों को अपनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C और अनुच्छेद 42 संविधान के विशिष्ट महत्व के हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान स्थिति की बात करता है। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त है और राज्य इससे इनकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए रोजगार या किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में समान अवसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को पर्याप्त आजीविका का समान अधिकार हो, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन हो। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम के लिए और मातृत्व राहत के लिए मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करेगा। इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कुछ अधिनियम कमोबेश सामने आए हैं, जो इस प्रकार है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1913, कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक, मातृत्व लाभ अधिनियम। वर्तमान समय में काफी बदलाव आया है। महिलाएं हर क्षेत्र में रोजगार कर रही हैं, पर अभी भी काफी कुछ बदलाव की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार 75% कामकाजी माताओं को करियर में बाधा आती है। नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी कम है, जिससे वरिष्ठ पदों पर पहुंचना कठिन होता है। व्यवस्थागत समस्याएं, कानूनी एवं संस्थागत ढांचे की कमी, जैसे समान वेतन और बाल देखभाल सुविधाओं का अभाव, ये बाधाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करती हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समृद्धि को बाधित करती हैं। लैंगिक समानता का मतलब

0: पुरुषों के खिलाफ होना नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा माहौल बनाना है जहां माँ बनने वाली महिला को जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी कहकर साइडलाइन न किया जाए और घर पर बच्चे संभालने वाले पिता को कमजोर न समझा जाए। कानून बना देने से सोच नहीं बदलती, असली बदलाव तब आएगा जब हम घर से शुरुआत करेंगे। लैंगिक समानता 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है। हर मीटिंग में यह पूछना कि क्या इस फैसले में महिलाओं का नज़रिया शामिल है, या प्रमोशन साइकिल में डेटा देखना कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ीं, और हर पुरुष को यह समझना कि फ़ायदा सिर्फ महिलाओं को नहीं पूरी टीम को होगा। यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। कार्यस्थल तभी पूरी तरह प्रोडक्टिव होगा जब आधी आबादी की प्रतिभा, ऊर्जा और नज़रिया बिना रुकावट के इस्तेमाल हो सके। समानता एहसान नहीं, समझदारी है।
1: बिल्कुल, समानता एहसान नहीं, समझदारी
2: है। और ये समझदारी हमें अपने घर परिवार से ही आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारे समाज में भी जागरूकता आएगी। और हम मतलब दोनों ही एक गाड़ी के पहिए होते हैं, यानी ये जो पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, तो अगर एक भी अगर डगमगाया तो सारी गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमको अपने अंदर अहम नहीं लाना चाहिए कि हम जो है क्यों करें, ये तो इनका काम है, और वो कहेंगे ये तो इनका काम है, हम क्यों करें। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कितनी सफल हुई है दुनिया, भाई ये वार्ता सुनकर के आप खुद ही समझ गए होंगे। वार्ताकार हैं नेहा मिश्रा। तो भाई आज का समय बदल चुका है ना रोशनी, और देखो अब हमारे कार्यक्रम में अब हम कुछ मूड चेंज करने के लिए सुनवाने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: हलचल हुई, कुछ शोर हुआ,
1: इश्क
0: इश्क
1: हुआ।
0: हुआ। भाई रोशनी, हमें भी इश्क हो चुका है अपनी श्रोता बहनों के साथ, सभी के साथ। तो भाई हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चंक होता है आगे का, वो क्या होता है? गृहलक्ष्मी टिप्स बताना, कि कुछ कुछ ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें होती हैं वो हम बहनों के संग शेयर करते हैं। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं?
1: आज हम बताने जा रहे हैं बाथरूम को कैसे बनाएं नए जैसा, और इसके लिए हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे अपनी सखियों को अपने अनुभवों से। घर का बाथरूम जो होता है वो केवल स्वच्छता का स्थान नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य और आराम से भी जुड़ा होता है।
0: सही कह रही हो।
1: समय के साथ बाथरूम में दाग धब्बे, फफूंदी, जंग, पानी के निशान और दुर्गंध जमा होने लगती हैं, जिससे वो पुराना और गंदा दिखाई देने लगता है। और यदि नियमित देखभाल ना की जाए तो और नहीं अगर नियमित देखभाल ना की जाए तो ये बहुत ही दुखदायी हो जाता है, बहुत ही दुर्गंध से भरा हो जाता
0: भरा
1: है
0: हो
1: और
0: जाता
1: पूरे
0: है,
1: घर में मतलब उसकी बू जो होती है वो आ रही होती है।
0: बैठना मुश्किल हो जाता है।
1: आप
0: और
1: किसी के अगर घर जाएं
0: हाँ,
1: और उनके वॉशरूम को अगर आपने यूज़ कर लिया हो तो उसकी पूरी, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति सब कुछ
0: सब
1: झलकने
0: कुछ
1: लग जाती है।
0: आपको सामने दिख जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए ये एक ऐसी प्लेस है कि देखो, इससे हमारे पूरे शरीर की सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, क्योंकि अगर हमको इन्फेक्शन लग गया है ना, वहाँ पर अगर जाले हैं या मच्छर मक्खी, ये सारी चीज़ें हो गए, छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अगर गए, हमने वॉशरूम किसी का इस्तेमाल कर लिया या कुछ हुआ, तो तुरंत हमारे इन्फेक्शन लग गया और हम भी। तो भाई ये तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपना टाइम निकाल करके रोज़ नहाने जाते हैं, तो जैसे हम अपने शरीर की नियमित सफाई करते हैं,
1: वैसे हमें अपने
0: अपने घर की
1: बाथरूम
0: नियमित सफाई करते हैं, अपने किचन की करते हैं, वैसे अपने बाथरूम की भी नियमित सफाई करने की आदत डालनी चाहिए। भाई जैसे घर में सारे लोग अपना टाइम बना लें कि आज लास्ट में जो नहाएगा वो निकलेगा, वो वाइपर चलाएगा और साफ करेगा, जो जो चीज़ें हैं, टाइल्स हैं या आपके मग है, बाल्टी है या साबुन रखने की रैक्स है, ये जो भी चीज़ें हैं आपको, जिसको भी घर में, भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि एक घर की महिला है वही साफ करेगी, जिसको टाइम पे समझ में आ रहा है वो
1: बिल्कुल।
0: उन चीज़ों
1: और मेरा
0: को।
1: तो ये मानना है कि आप जब खुद अकेला इंसान भी जब वॉशरूम यूज करे तो आपने अगर वॉशरूम को गीला किया है, फर्श को गीला किया है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आपने जैसा बाथरूम लिया था आपको वैसा ही बाथरूम सामने वाले को भी
0: बिल्कुल,
1: देना
0: वाइपर
1: चाहिए।
0: चला के
1: बिल्कुल
0: निकलिए आप
1: बिल्कुल।
0: उसमें।
1: तो बिना किसी अधिक खर्च के बाथरूम को फिर से नए जैसा कैसे बना सकते हैं, आज उसकी बात करने जा रहे हैं। कि एक तो जैसा आपने बताया कि नियमित सफाई को अपनी आदत में शुमार करें, दूसरी है कि टाइल्स में जो चमक चली जाती है उसको कैसे लौटाएं।
0: भाई रोज अगर हम उसकी साफ सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत गंदगी कहीं ना कहीं जमी रह जाती
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल।
0: तो उसकी सफाई कैसे करें बताओ?
1: तो उसके क्या करते हैं, मेनली हमारे घर में मौजूद जो सिरका और बेकिंग सोडा होता है उसी का थोड़ा सा मिश्रण बना लेते हैं और कुछ मिनट के लिए ब्रश की मदद से उसे टाइल्स के फर्श सरफेस पे फैला देते हैं और फिर उसके बाद उसको पानी से धो देते हैं तो टाइल्स का
0: और
1: जो,
0: ब्रश से रगड़ दो तो वो चला जाता है।
1: हाँ, और फफूंदी वगैरह कई जब जम जाती हैं तो उसे कैसे हटाया जाए। नमी के कारण क्या होता है कि बाथरूम में फफूंदी और काई जमने लग जाती हैं। ब्लीच या

0: एंटी फंगल क्लीनर का प्रयोग करके हम इन्हें साफ करते हैं और सफाई के बाद अच्छी तरह से बाथरूम को सुखा लेते हैं। तो एक बार जब बाथरूम पूरी तरह से सूख जाता है तो फफूंद जो होता है वो पूरी तरह से
1: हट जाता है। और नल और शावर जो है वो भी बहुत जरूरी, देखते हो ना उसमें दाग धब्बे जैसे पानी के छींटे जैसे दरवाजों पे भी छींटे पड़ते हैं, तो टाइल्स तो तुमने बता दिया, तो ऐसे ही जो है नल और शावर को भी चमकाने के लिए नींबू के छिलके के और ले लेते हैं और उसका रस निचोड़ लेते हैं और उसमें सिरका मिला लेते हैं, फिर वही जो छिलका होता है ना उसको जो है पूरे नलों पे रगड़ देते हैं और उसके रगड़ने के बाद थोड़ी देर बाद कपड़े से पोंछ दीजिए तो वो फिर से नया लगने लगता है।
0: और जो बदबू आ रही होती है बाथरूम से उसे कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके लिए ताजगी बनाए रखने के लिए हम एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें और सुगंधित जो एयर फ्रेशनर आजकल मौजूद होते हैं कपूर, या आप नेचुरल वे में भी इस तरीके के एयर फ्रेशनर बना सकते हैं जैसे नींबू में कुछ क्लोव्स डाल के और कुछ नमक डाल के, तो एक अच्छी खुशबू देता है बाथरूम में। तो
1: प्राकृतिक सुगंध वाले पौधे भी रख सकते हैं अगर आप क्या जो है रैक बना है या पीछे ऊपर से जैसे नहीं दासा जैसा बना होता है तो उस पे कुछ पौधा भी ऐसा आप रख देंगे तो जिससे कि जो है अगर एग्जॉस्ट चलाते हैं तो सारी तरफ सुगंध फैलती है।
0: टूटे फूटे जो सामान हमारे पड़े रहते हैं जैसे खाली जो बॉटल्स हो जाते हैं शैम्पू के या फेस वॉश के, उसे कोशिश करें कि समय समय पे हटाते रहें, एकदम से जो इकट्ठा कर देते हैं हम भीड़ इसको अगर हटाते रहेंगे समय समय पे तो हमारा जो बाथरूम है वो भी बड़ा लगेगा और खाली खाली और साफ सुथरा लगेगा।
1: बिल्कुल। और जो है जैसे साबुनदानी है, मग है और उचित रोशनी की व्यवस्था है और इस मतलब ड्रेनेज की व्यवस्था है, शेल्फ और ऑर्गेनाइजर जो होते हैं सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी छोटे छोटे बदलाव करते रहें
0: और बड़ा असर दिखता है,
1: असर दिखता है, इसलिए नियमित सफाई, सजावट, सामान का रख रखाव बाथरूम को सुंदर और स्वच्छ बनाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी सुधारता है।
0: तो हमारे स्वास्थ्य को कुछ और भी सुधारता है जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: आने जा रहे हैं।

तो भाई रोशनी गीत के साथ ही साथ एक बात ज़रूरी कहनी है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बाहर बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, तो समय समय पे पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, पना पीजिए और सूती कपड़े पहनिए और ढक कर बाहर निकलिए अपने आप को, क्योंकि अभी भी हमको बचाव गर्मी से करना है। और देखिए घड़ी हमको इशारा कर रही

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार

0: सोमवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर

0: पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।

0: ने हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं। चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओ हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था।

फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है,

0: इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
0: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
0: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
0: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
0: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
0: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज

0: चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया।

0: फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी

0: रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। अब हमारी मीडियम वेव पर यह सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, दूसरी सभा आरंभ होती है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नन्ही दुनिया में। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर लेकर चलने वाले हैं।
1: दीदी सफर पे तो जाएंगे, पहले ये तो बता दे कि आज मैं बहुत दिन बाद मिलने आई हूँ। मैं हूँ रचना दीदी।
0: और मैं रोशनी दीदी। और साथ में हमारे साथ आई हैं एक नन्ही मुन्नी साथी स्वरा बंसल। तो हम तीनों आज अपने साथियों को लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी सफर पर जहाँ ताजी हवा है, हरे भरे खेत हैं और चिड़ियों की चहचहाहट भी है।
1: हाँ मैं समझ गई दीदी, आप छुट्टियां चल रही हैं, आप किस ओर हमें घुमाने ले जा रही हैं?
0: तो बताइए कहाँ ले चल रहे हैं?
1: अरे गांव की ओर ले जा रही हैं।
0: तो चलिए स्वरा से पूछते हैं कि क्या स्वरा कभी गांव गई है या गांव के बारे में कुछ जानती है। स्वरा बताइए क्या आप कभी गांव गई हैं?
2: हाँ मैं गांव तो गई हूँ।
0: तो फिर गांव के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए।
2: मैं गांव की बात बताऊंगी एक पोयम के जरिए।
1: अरे वाह, तो जल्दी से बताइए।
2: समर इन अ विलेज वुड बी सच अ बोर, आई थॉट बट आई लर्नड टू वॉक विदाउट शूज विद मड बिटवीन टोस, टू सो पैडी सीड्स एंड पुल आउट ऑल वीड्स, to swing from the banyan tree, to ride buffaloes for free, to see tadpoles become frogs and play with village dogs. Wow. Summer in a village was happier than I thought when I made new friends.
1: भाई wow, ताली, बहुत सुंदर। तो स्वरा जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए कि आपको गांव में जाके क्या क्या करने में मजा आता है। जो आपने अपनी पोयम में सुनाया ना, वो बताइए कि आप गई थी वहाँ गांव, तो आपने क्या क्या किया?
2: मैं गई थी तो पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार कितना बोरिंग होगा वहाँ पे जाना, पर जब मैं गई तो मैंने मड पे मिट्टी पे पैर रखना सीखा, ठंडा भी लग रहा था वहाँ पे, और मैंने बीज बोना सीखा।
1: अरे वाह।
2: और अनवांटेड प्लांट्स को नोचना भी सीखा, उसमें भी मजा आता है। और मैंने सीखा बुफलोस पे राइडिंग करना, वो भी बिना पैसे के। वो
1: और
2: मैंने सीखा
0: झूले भी, तो झूले होंगे।
2: हाँ, और मैंने ट्रीज में झूले भी झूले थे।
1: और सवारी भी तो की थी किसी चीज की।
2: हाँ मैंने बुफलोस की सवारी की थी। और मैंने वहाँ पे देखा कि जो टेडपोल्स थे छोटे छोटे बेबी फ्रॉग्स, वो फ्रॉग्स में बदल गए थे, और डॉग्स के साथ खेलना भी सीखा।
0: यार आपने तो बहुत सारे काम किए, भैंस की सवारी कर ली, डॉग्स के साथ खेल लिए। शहर में रहके क्या आप ये काम नहीं कर पाते स्वरा?
2: नहीं, शहर में उतना नहीं कर पाती।
0: क्या डर लगता है मिट्टी में पाँव रखने से? क्या पैर गंदे हो जाते हैं क्या मिट्टी में चलने से?
2: हाँ, पहले जब मैं गाँव में नहीं गई थी तब मुझे ऐसे ही लगता था।
0: ओहो, तो यानी कि गर्मी की छुट्टी में आप भी जो दोस्त हैं स्वरा के, वो आप भी गर्मी की छुट्टियां इस बार गांव जाकर बिताइए, तो आपको लगेगा कि मिट्टी में पांव रखने से पैर गंदे नहीं होते, है ना स्वरा? भैंस की सवारी फ्री में करके आइए स्वरा।
1: और मालूम है, और मिट्टी में चलने से फायदे भी बहुत होते हैं। कई बार मिट्टी हमको नुकसान की बजाय बहुत फ़ायदा देती है, और मिट्टी से जो है हम अनाज उगाते हैं, उसी में पौधे लगाते हैं ना स्वरा, है ना? और क्या करते हैं, प्रकृति का वरदान है, क्योंकि वहाँ हमें स्वच्छ वायु मिलती है, है ना?
0: तो स्वरा आपको और क्या क्या पसंद है, आप क्या करना क्या करती हैं, जो आपके हॉबीज है कुछ?
2: मुझे सिंथेसाइजर बजाना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, और पढ़ाई में क्या करती हैं?
2: पढ़ाई में भी मतलब मैं, मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगती है।
1: और अच्छा ये बताइए, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने पूछा आप पढ़ाई करती हैं कि नहीं करती हैं, घर में क्या क्या करती हैं, अपना रूटीन बताइए जल्दी से।
2: पहले मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद नहा धो के रेडी होती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा टीवी देख

0: करने के बाद पढ़ाई करती हूँ होमवर्क।
1: अरे वाह, तो राइटिंग करती है कि नहीं करती है?
0: करती हूँ।
1: और क्राफ्ट वर्क?
0: क्राफ्ट वर्क तो अब मम्मा फ्री होंगी तब मुझे कराएंगी।
1: ओके ओके ओके, तो रोशनी दीदी इनसे और भी बात करेंगे हम लोग। सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, इनको सुनवा देते हैं।
2: हाँ, तो ये गीत सुनवाते हैं अपने साथियों को।

0: स्वरा,
1: हाँ
0: गीत सुनकर मजा आया?
1: हाँ मुझे तो बहुत मजा आया।
0: पसंद का था?
1: हाँ
0: अरे वाह, ये तो बहुत जी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि यहीं पर डांस करने लगे। अच्छा ये बताओ, जो है तुमको और क्या क्या चीजें अच्छी लगती, खाने में क्या क्या पसंद है?
1: खाने में मुझे पसंद है मम्मी का शाही पनीर।
0: अरे वाह, बच्चों को शाही पनीर बहुत पसंद आता है। ग्रीन वेजिटेबल खाती है कि नहीं खाती है?
1: हाँ मैं लेडी फिंगर्स खाती हूँ।
0: और गेम में क्या क्या पसंद है?
1: गेम में कैरम, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स ऑल भी।
0: ये आउटडोर गेम्स पसंद है कि नहीं पसंद है?
1: हाँ
0: पसंद है। कि तो फ्रेंड्स कितनी है यहाँ पर, घर के आसपास कोई फ्रेंड्स है जिसके संग आप खेलती हैं?
1: घर के बगल पे तो नहीं है,
0: अच्छा, स्कूल में कितनी सारी फ्रेंड्स हैं?
1: स्कूल में मेरी 5 फ्रेंड्स।
0: तो उनको मिस करती हैं आप?
1: हाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि स्कूल नहीं खुला ना, तो
0: तो ये छुट्टियां आपको कैसी लग रही हैं?
1: छुट्टियां मुझे अच्छी लग रही हैं।
0: अच्छा, और ड्राइंग करना अच्छा लगता है?
1: हाँ
0: अच्छा, क्या क्या बनाती हैं?
1: ड्राइंग में मैं बनाती हूँ यूनिकॉर्न्स, फ्लावर और भी।
0: अच्छा ये बताइए, गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपनी छत पे क्या आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखती हैं, जाती हैं रखने के लिए?
1: हाँ
0: हाँ ज़रूर, उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर जैसे डॉगी ये बैठे रहते हैं तो उनको भी खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके संग हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना, उनको टीस नहीं करना चाहिए, है
1: हाँ
0: कभी सताना नहीं चाहिए, है ना?
1: हाँ
2: स्वरा, आपने जैसा गाना सुना तो क्या आपको कोई, आप भी गाना गुनगुनाती हैं, कोई फिल्मी सॉन्ग आपको याद है?
1: गुनगुनाती हूँ।
2: तो कुछ गुनगुनाएंगी हमारे लिए भी प्लीज स्वरा?
1: अच्छा मुझे एक केसरिया पे याद है
2: हाँ तो
1: थोड़ा सा।
2: सुनाइए थोड़ा सा।
1: केसरिया तेरा इसके प्यार।

0: वाह वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर गाना सुनाया। अच्छा ये बताइए, आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं स्वरा?
1: मैं बड़े होके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ।
0: किस लिए?
1: क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को लीड करना है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी कंट्री को लीड करना चाहती हैं। तो उसके लिए देखिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना।
2: तो स्वरा क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने, मतलब लीड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों में या किसी भी इंसान में?
1: मतलब लीड करने के लिए हम लोग को अपनी सारी टीम को लेके चलना चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और खुद में भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
2: वो तो मुझे दिख रहा है आपके अंदर। फिलहाल स्वरा से बात करके तो आज बहुत मजा आ गया।
0: बहुत बहुत मजा आया दीदी। अब आप कुछ और भी स्वरा को जानकारी देना चाहती है ना, उनके साथ साथ और बच्चे भी सुनेंगे हमारे,
2: तो बता दें आज बच्चों को एक जादुई शब्द के बारे में बताना जा रहे हैं हम लोग। कि शुरुआत करते हैं कि बच्चे जब आप लोग शाम में कोई गेम खेलते होंगे, स्वरा जैसे आप भी खेलती होंगी, तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि आके एकदम से अपनी दादागिरी चलाता होगा कि मैं जो बोलूंगा बस वही गेम होगा, ऐसा होता है कभी स्वरा?
1: हाँ होता है।
2: तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे में, क्या उसकी दादागिरी चलवाते हैं?
1: नहीं, हम लोग चलवाने नहीं देते।
2: तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग, सबसे उसकी सहमति पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ तुम कौन सा गेम खेलोगे, तुम कौन सा गेम खेलोगे, और ऐसे में जिसकी मेजॉरिटी रहती है, जिस गेम की मेजॉरिटी रहती है वही गेम खेलते होंगे।
1: हाँ
2: ऐसा होता है ना। तो बस बच्चों यही है हमारा आज का जादुई शब्द, प्रजातंत्र। स्वरा क्या आपको पता चला प्रजातंत्र क्या है, और आप लोग किस तरीके से शाम में जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो इस प्रजातंत्र को अपनाते हैं? प्रजातंत्र का मतलब मिलजुल कर सबकी मर्जी से फैसला लेना, जो आप रोज कर रहे होते हैं। और जैसा आपने बताया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगी, तो प्रधानमंत्री तो प्रजातंत्र को ही चलाता है ना स्वरा?
1: हाँ
2: है ना,
0: यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा,
2: जनता से है ना। तो स्वरा जैसा आपने भी बताया कि आप भी बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की सहमति लेती हैं और तब गेम्स खेलते हैं, तो वही हुआ प्रजातंत्र। तो अपने नन्हे साथियों को आज हमने ये भारी भरकम से सुनने वाले, सुनाई देने वाले शब्द प्रजातंत्र के बारे में बताया।
0: और दीदी कुछ काम की बातें भी बता दे कि भाई बाहर से दौड़ के खेल के आइए तो जो है आप पानी ना पीजिए
2: और अपने और हाथों को जरूर धोइए।
0: हाँ, हाथों को धोइए धोइए। और देखिए हमारे भैया कह रहे हैं कि, इशारा कर रहे हैं कि अब हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो हम बच्चों से अनुमति लेते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों
3: जय हिंद।

0: धन्य मुन्ने अभी अपना नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ संदेशों के बाद युवजन सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत कार्यक्रम युवा

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में युवाणी के। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी हमदम उन्नति,
1: और उन्नति के साथ आज है पूजा यादव।
0: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये शाम है वो अच्छी और खूबसूरत जा रही होगी, क्योंकि अब हम आ चुके हैं तो हम आपका एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखेंगे और आपके जो लर्निंग है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, हम उसका भी ख्याल रखेंगे।
1: यकीनन, आज का भारत यंग है उन्नति, एनर्जेटिक है और आइडियाज से भरा हुआ है। हमारे युवा सिर्फ अपना ही फ्यूचर नहीं बना रहे, बल्कि हमारे देश को भी शेप दे रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनोवेशन कैसे इंडियन यूथ को एम्पावर कर रहा है, कैसे उन्हें इंस्पायर कर रहा है हमारी कंट्री, हमारे इंडिया को और डेवलप करने के लिए।
0: बिल्कुल। और पूजा, तुम्हें याद है एक समय था जब हम इनोवेशन के लिए सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखते थे, लेकिन आज इंडिया खुद इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है, और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ हम यूथ्स का ही है।
1: बिल्कुल, आज का युवा सिर्फ जॉब ढूंढने वाला नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएट करने वाला भी बन रहा है। चाहे बात हो स्टार्टअप्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बायोटेक्नोलॉजी की, या फिर सोशल इनोवेशन की, हर जगह इंडियन यूथ अपना टैलेंट दिखा रहा है।
0: और सबसे खास बात यह है कि इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों और गांवों के युवा भी नए नए आइडियाज़ के साथ आगे आ रहे हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने अपॉर्चुनिटीज़ को हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल बना दिया है।
1: बिल्कुल, आज देख रहे हैं कि इंटरनेट का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आज सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि गाँवों में भी लोग स्टार्टअप्स को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। एंड फार्मिंग अब वो ट्रेडिशनली नहीं रह गई है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है।
0: और देखो, जैसे कि हम यूथ की बात कर रहे थे ना, तो आज का यूथ जो है ये रिस्क लेने वाला हो गया है, वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और फिर और भी मजबूत होकर वापस आते हैं, और यही स्पिरिट इनोवेशन की असली पहचान होती है।
1: बिल्कुल उन्नति, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनोवेशन नए आइडियाज़ के लिए, क्योंकि हमें पता होता नहीं कि ये आइडिया हिट होगा या नहीं, मतलब ये मार्केट में प्लेस अपनी बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो एक जोखिम के साथ आगे बढ़ना होता है। तो यूथ में, अच्छा यूथ में स्पेशली उनकी एज जिस हिसाब से होती है, उनमें काफी एनर्जी होती है, वो रिस्क लेना जानते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो नए नए आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल। और देखो, जैसे कि मतलब हम कुछ भी नया करते हैं तो हमारे पास चैलेंजेस और मुश्किलें तो आती ही है, तो अब ऐसा नहीं है कि इनोवेशन हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें मुश्किलें नहीं आएंगी। तो ऐसा होता है, कभी रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, कभी गाइडेंस की कमी हो जाती है, कई बार लोग नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते सोसाइटी में, और समय लेते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस आने के बाद भी हमारा जो इंडियन यूथ है ये रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता है।
1: बिल्कुल, आज का दौर डिजिटल का है, टेक्नोलॉजीज काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। अब बहस आ चुकी है ह्यूमन वर्सेज AI, इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया क्या उन्हीं पर हावी हो सकती है, या AI इंसानों के काम को और आसान बनाएगा। इन बहस या इन मुद्दों के बीच एक ऐसा विषय है उन्नति जिस पर बात किया जाना बेहद ज़रूरी है, और वो विषय है भारतीय नवाचार में युवाओं की सहभागिता। उन्नति, हम इस पर बात करेंगे,
0: बिल्कुल
1: डिटेल से बात करेंगे, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम का पहला गीत हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: तो पूजा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो युवाओं का देश है।
1: बिल्कुल।
0: भारत की 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम है और औसत आयु केवल 28 साल। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी ऐसा वर्ग जो काम करने में सक्रिय है भारत के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है आने वाले समय के लिए।
1: यही वजह है कि साल 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया उन्नति। ये एक ऐसा आइडिया है कि यूथ खुद कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करे और

0: दूसरों को नौकरी भी दी, मतलब कि सिर्फ खुद नौकरी ना करे बल्कि जॉब क्रिएटर बने. इन शॉर्ट, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना.
1: बिल्कुल, जैसा कि तुमने पहले ही बताया, इसके ज़रिए गवर्नमेंट ने इनोवेशन के द्वारा, मतलब इनोवेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया. ऑनलाइन पेमेंट्स, कैशलेस इकोनॉमी, ड्रोन AI जैसे नए आइडियाज़ को फंडिंग, टैक्स छूट और मेंटोरशिप देकर बढ़ावा दिया, ताकि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और पुख्ता हो सके.
0: इस तस्वीर की पुख्ता तस्वीर आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, कुछ आंकड़े हैं. साल 2016 में केवल 400 स्टार्टअप्स थे, लेकिन मई 2026 तक 1.35 लाख स्टार्टअप जो है रजिस्टर किए गए. ये बहुत डिफरेंस दिखा रहा है नंबर्स में, कितनी बिल्कुल जल्दी जो है नए नए स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए. और भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. तो बात चाहे कैशलेस इकोनॉमी की हो, एजुकेशन सेक्टर की हो, हेल्थ सेक्टर की हो, या फैशन वर्ल्ड की, हर सेक्टर में इनोवेशन में कहीं ना कहीं एक नई क्रांति हमें देखने को मिली.
1: बिल्कुल, और इनोवेशन की शुरुआत होती है आइडिया से, जैसा कि हमने पहले ही बात की. हर किसी के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, यही आइडिया आगे चलकर इनोवेशन का रूप ले लेते हैं. सो थिंक, सोचिए, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए. जो टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमारे पास हैं, उसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो मिसिंग है.
0: और यही थॉट आपको मोटिवेट करता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नए आइडिया के साथ हम आए और कुछ नया इनोवेट करें. यूथ की एनर्जी अगर इस पॉजिटिव वे में लगे तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं.
1: बिल्कुल,
0: और सबसे बड़ा सपोर्ट इस चीज़ से भी मिल सकता है कि भारत सरकार द्वारा कई सारी पहल की गई, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया जिसमें फंडिंग बिजनेस प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन यानी कॉलेज में सरकारी विभाग और उद्योगों की जटिल समस्याओं को तकनीकी तौर पर उनके समाधान खोजना.
1: बिल्कुल,
0: तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट यूथ को खास तौर पे मिल रहा है कि वो नई नई चीजों को इनोवेट करें. क्योंकि हम देख रहे उन्नति की जनसंख्या भी ज्यादा है देश में, तो अगर हर कोई जॉब पाने के पीछे भागेगा तो जॉब
1: तो बनाएगा कौन. बिल्कुल, और पता है पूजा, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है. स्कूल्स और कॉलेजेस में इनोवेशन लैब्स खुल रहे हैं, और जैसा कि तुमने बताया हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के और उनको इनक्रेज किया जा रहा है, ताकि नए स्टार्टअप्स और भी ज़्यादा उभरे. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें दिख ही रही है. तो आपके पास भी अगर ऐसे कोई नए आइडियाज़ हों तो उसे जो है दुनिया के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, ना हेसिटेट करें.
0: बिल्कुल नहीं, और इंडिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जुगाड़ तो हमें मिल ही जाता है, तो वो आइडिया ही होता है आपका. अगर वो अच्छे सपोर्ट के साथ और इन्हेंस किया जाए तो नई टेक्नोलॉजीज हमें मिलेगी.
1: बिल्कुल,
0: और देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं.
1: बिल्कुल, तो पूजा, हमें लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ये इनोवेशन के बारे में जो भी हमने बातचीत की, उससे उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन आया होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जो है उनके अंदर आई होगी, वो भी नए आइडियाज क्रिएट करे और उन्हें भी जॉब क्रिएशन का एक मौका मिले.
0: बिल्कुल,
1: तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम लेंगे एक यू टर्न और करेंगे आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक.

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका विषय है भारतीय नृत्य की विभिन्न शैलियां, और इसकी वार्ताकार हैं कृतिका अग्रवाल।
1: तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: गाना, बजाना और नाचना मन की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो पशु पक्षी, कीट पतंग, देव दानव और मनुष्य सभी में पाई जाती हैं। इन स्वाभाविक क्रियाओं को जब कोई व्यवस्था दी जाती है तो उसे कला कहते हैं। प्रकृति भी उस व्यवस्था का पालन करती है। मन में उठे सुख और दुख की अनुभूतियाँ जब गीत बनकर गूंजने लगती हैं, तो उन्हीं को विभिन्न नामों से पुकार कर किसी न किसी राग का नाम दे दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब चेष्टाओं द्वारा अनुभूतियाँ व्यक्त होती हैं, तो उन्हें विविध मुद्राओं और अंगहारों का नाम दे दिया जाता है। गीत और नृत्य की सृष्टि इसी प्रकार हुई है। भारतीय नृत्य कला अत्यंत पुरानी कला है, जिसका स्रोत नाट्य वेद में निहित है। उसी के आधार पर भरत ने नाट्य शास्त्र में नृत्य कला को विस्तार से समझाया है। भारत के अलग अलग प्रांतों में शास्त्रीय आधार पर जिन तत्वों को ग्रहण किया गया, उनमें शास्त्रीयता के साथ साथ लोक तत्वों के मिश्रण से कुछ नई शैलियों का जन्म भी हुआ, और उसी के आधार पर लोक में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य विधाएं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के नाम से जानी जाने लगीं, जिनमें भरतनाट्यम, ओडिसी या उड़ीसी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथक प्रमुख हैं। दक्षिण भारत

में तमिलनाडु प्रदेश की प्रसिद्ध शैली का नाम भरतनाट्यम है, जिसकी परंपरा 2000 वर्षों की है। इस नृत्य की शास्त्रीय पद्धति का सूत्रपात विशेष रूप से तंजौर में हुआ। इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवराधन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले इस नृत्य को शास्त्रीय क्रम के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें उसकी गति के अनुसार अलरिपु, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और श्लोक भक्ति काव्य का प्रयोग होता है। संगीत के समस्त अंगों और उपंगों का प्रयोग इसमें शास्त्रोक्त प्रकार से ही किया जाता है। प्रारंभ में भरतनाट्यम केवल देवदासियों द्वारा मंदिर की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित था और उसे देवदासी अट्टम कहा जाता था। अब वह पुरुष और स्त्रियों द्वारा सर्वत्र प्रचार में है। कथकली दक्षिण भारत के केरल प्रदेश मुख्य नृत्य है, जिसका आविर्भाव प्राचीन लोकधर्मी नाट्य नृत्य की परंपरा कृष्णनट्टम से हुआ। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है खेल। किसी कथा को पात्रों के बड़े बड़े मुखौटे लगाकर संगीत में अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करने को ही कथकली नाम से पुकारा जाता है। नृतक अपनी भाव भंगिमा और मुद्राओं द्वारा किसी पौराणिक कथा का दिग्दर्शन लोक नृत्य शैली के माध्यम से कराते हैं, जिसमें शास्त्रीय भाव भंगिमाओं और मुद्राओं की प्रधानता रहती है। मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तर पूर्वीय छोर पर मणिपुर प्रदेश में प्रचलित है। इस नृत्य शैली में धार्मिक और पौराणिक गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है और वैष्णव पदावली को प्रधानता दी जाती है। रासलीला मणिपुरी नृत्य की एक विशेषता है, जिसका प्रदर्शन प्रायः सभी उत्सवों पर किया जाता है। इस नृत्य में कोमलता और सुकुमारता के दर्शन होते हैं। मंद मंद कंपन और गति तथा पदाघातों से नृत्य का आरंभ होता है, जो धीरे धीरे चरम विकास की ओर बढ़ता है। वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। कथक उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य विधा का नाम है। विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ की संस्कृति में अनेक मिश्रण हुए, इसीलिए अनेक प्रकार की वेशभूषा, व्यंजन और विविध प्रकार की कलाओं ने यहाँ जन्म लिया। गायन व नृत्य के माध्यम से कथा की प्रस्तुति करने वाले कलाजीवी कथक कहलाए, जिन्होंने कथक या नटवरी नाट्य नाम से एक शैली को जन्म दिया, जिसमें भाव प्रधान, ताल प्रधान और चमत्कार प्रधान तत्वों का समावेश था। शास्त्रीय आधार पर कथक में गत, भाव, परन, तोड़े, नायक नायिका, भेद और तत्कार इत्यादि तथा लोक रंजन की दृष्टि से एक या अनेक घुंघरुओं की आवाज निकालना, ताल वादक के साथ प्रतिस्पर्धा और ब्रज की रासलीला के कुछ तत्वों व कवितों का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य नाट्य है, जो वैष्णव भक्ति भावना से ओतप्रोत होता है। कुचिपुड़ी गांव के नाम पर ही यह नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य कहलाया, जो बाद में कुचिपुड़ी बोला जाने लगा। वहां रामायण की कथा को गीत, नृत्य व अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष की भूमिकाओं को अधिकतर पुरुष पात्र ही अभिनीत करते हैं, जिसमें गीत, नृत्य, संवाद एवं मूक अभिनय भी होता है। यह नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की विशेषताओं को भी अपने में संजोए हुए है। ओडिसी या उड़ीसी नृत्य की परंपरा भरतनाट्यम नृत्य की तरह ही प्राचीन है। बुद्धिकालीन सहजयान और व्रजयान शाखाओं की सौंदर्य प्रधान साधना से उड़ीसी नृत्य का जन्म हुआ, जो सन 1950 से विशेष प्रकाश में आई। ईश्वर को समर्पित भाव भंगिमाएं ओडिसी नृत्य शैली का आधार है, जिनमें प्रधान भाग लास और अल्प भाग तांडव का मिश्रण है। इसीलिए

0: इसमें भरतनाट्यम और कथक का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी में निर्मित भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ पुरी का मंदिर ओडिसी नृत्य की प्रमुख आधार भूमि है। तमिलनाडु की देवदासियों और केरल के नंग्यारों के मेल से जो नई नृत्य पद्धति प्रकाश में आई उसे मोहिनी अट्टम कहा गया।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो श्रोताओं, संदेश से पहले आपने सुनी थी वार्ता। वार्ता का विषय था भारतीय नृत्य की विभिन्न शैलियाँ। वार्ताकार थी कृतिका अग्रवाल। हमें उम्मीद है कि वार्ता आपको पसंद आई होगी। आपने नृत्य की शैलियों के बारे में बहुत कुछ जाना होगा।
6: बिल्कुल।
5: अब क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए उन्नति।
6: बिल्कुल।

0: श्रोताओं बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की ओर।
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम भारतीय विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जब भी भारत में विज्ञान के विकास की चर्चा होती है तब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वो केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि एक महान शिक्षक, उद्योगपति, समाज सेवी और राष्ट्र प्रेमी भी थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति भी है।
0: बिल्कुल। क्या कभी आपने सोचा है कि जो दवाइयाँ, रसायन और वैज्ञानिक उपकरण हम इतनी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उनके पीछे कितने वर्षों की मेहनत, शोध और समर्पण छिपा होता है। भारत में वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की जो नींव आज हमें दिखाई देती है उसे मजबूत बनाने में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का योगदान बेहद अहम रहा है। इसी कारण उन्हें आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
1: उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को वर्तमान बांग्लादेश के एक गांव में हुआ था। उनके परिवार में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व था। बचपन से ही उनमें ज्ञान प्राप्त करने की गहरी जिज्ञासा थी। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और यही हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर सीखने की लगन हो तो परिस्थितियाँ कभी भी हमारे प्रगति को रोक नहीं सकती।
0: बिल्कुल। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय गए। वहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान में गहन अध्ययन किया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत लौटे क्योंकि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं था, वे अपने ज्ञान का उपयोग भारत के विकास के लिए करना चाहते थे। आज के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है कि ज्ञान का सबसे सर्वोत्तम उपयोग तभी है जब वो समाज के हित में लगाया जाए।
1: बिल्कुल। भारत लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया। वो केवल पुस्तकें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे बल्कि विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न पूछने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि विद्यार्थी उन्हें केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में देखते थे।
0: बिल्कुल। आचार्य राय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि विज्ञान को केवल वो प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि वैज्ञानिक लाभ आम लोगों तक पहुँचे और ये सबसे बड़ी खास बात अपने आप में है। भारत की पहली स्वदेशी रासायनिक कंपनियां उन्होंने एस्टैब्लिश की थी इंडिया में। उस समय ये कदम केवल एक उद्योग की स्थापना नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम था।
1: बिल्कुल। आज जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक सदी पहले ही स्वदेशी उद्योगों और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का महत्व समझ लिया था। उन्होंने दिखाया कि अगर हम अपनी प्रतिभा और संसाधनों पर विश्वास करें तो हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने अनेक शोध कार्य किए और विशेष रूप से मैक्यूरस नाइट्राइट नामक यौगिक की खोज की जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। उनके शोधों ने भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल। और लेकिन दोस्तों, उनकी महानता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी, वो एक संवेदनशील समाज सेवी भी थे। जब भी देश में प्राकृतिक आपदाएं या कठिन परिस्थितियां आती थी तो वो लोगों की सहायता करने के लिए आगे ज़रूर आते थे। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, सेवा और त्याग

0: विशेष महत्व दिया। वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की सफलता तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज को मिले।
1: बिल्कुल, और भारतीय विज्ञान के इतिहास पर उन्होंने एक बेहद खास किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और ये किताब आज भी जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है टेक्नोलॉजीज और साइंस बायोटेक को समझने के लिए।
0: बिल्कुल, तो अगर हम आज इस समय की बात करें तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन पहले से कई अधिक प्रासंगिक हमें दिखाई देता है। आज का युवा विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप और नवाचार, जिसके बारे में हमने अभी बात की,
1: बिल्कुल,
0: उन सब के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। आचार्य राय हमें ये सिखाते हैं कि सफलता केवल बड़े सपनों से नहीं मिलती बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना से भी प्राप्त होती है।
1: और यही वजह है कि हम ऐसी पर्सनालिटीज पर बात करते हैं अपने शो में ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। और हमारे श्रोता इसीलिए हमसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन तो लाते ही हैं, एंटरटेनमेंट भी लाते हैं। तो नीति, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
0: बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। अब ये वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका सही जवाब आपको अपने अगले एपिसोड में बताते हैं, तो उसी कड़ी में हमारा जो कल का सवाल था वो था भूपेन हजारी का सेतु भारत के किन दो राज्यों को जोड़ता है, और इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
1: बिल्कुल, और आज का सवाल है काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। आई रिपीट, काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। आप अपना सही जवाब हमारी ईमेल आईडी में दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8004926250।
0: बिल्कुल दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम भी पसंद आया होगा, और जो आपके फीडबैक्स हैं, आपके सजेशंस हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जल्दी जल्दी फोन उठाइए और आप जो भी बात हमसे कहना चाहते हैं आप प्लीज़ हमें बताइए।
0: बिल्कुल, तो पूजा, इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को चलते चलते एक और गीत सुनवा देना चाहिए।
1: बिल्कुल अनिति।

0: तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को
1: और मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

युवजन अभी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। 6 बजने वाले हैं, कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बने।

0: मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण

पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे फूलचंद शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत और अनूप उपाध्याय से लोक भाषा कविता पाठ। पंचायत घर कार्यक्रम में ही आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रियंका सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, धान की नर्सरी की देखभाल।

हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता डॉक्टर कुबीर नाथ राय का रचना संसार। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर आपको सुनवाएंगे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन और गीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे।

चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। कानून और हम इस कार्यक्रम में 8:30 पर सुनिएगा उत्कर्ष शुक्ला की वार्ता बाल श्रम बिखरता बचपन कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारियां। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां लेकर आएंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10 बजे और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर पंडित अजय पोहनकर का गायन। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना कल सुबह 6:05 पर। विचार बिंदु कार्यक्रम में 6:30 पर सुनिएगा राजा राम मोहन राय के विचार। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर कृषक जन सुनेंगे डॉक्टर एस डी मेकार्टी से बातचीत। भेड़ बकरी पालन का भेड़ बकरी का व्यावसायिक पालन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शेख मोहम्मद शहजाद की वार्ता, अनिद्रा और बेचैनी का उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे, और इसके बाद 7:10 पर फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं सुनवाई जाएंगी। विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन आपको सुनवाएंगे कल सुबह 7:30, दिन में 12:15 और रात्रि 10:30 पर। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 8:45 पर, और 9 बजे आने दीजिएगा फिल्म संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर आपको सुनवाएंगे ज्योति आनंद के गाए भजन और गीत। सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अर्चना दास के गाए भजन और गीत। लोक माधुरी कार्यक्रम में कल सुबह 10:05 पर आपको सुनवाएंगे बाबूलाल दिवाकर के गाए लोकगीत। 10:30 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम, कलाकार पंचम लाल यादव और साथी प्रतिमा श्रीवास्तव और विष्णु राजा। एक ही कलाकार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे कल 11 बजे, और 11:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:30 पर। पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी शशि जैन के गाए लोकगीत और प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव की वार्ता, गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव और सीख कितनी कारगर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपके लिए लेकर आएंगे कल दोपहर बाद 2:30 पर। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे छेदी लाल और साथियों के गाए लोकगीत।

पंचायत घर कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर के गाए लोकगीत और श्यामा चरण पांडे से रामायण पाठ प्रसारित किया जाएगा। संस्कृत कार्यक्रम में कल शाम 7:31 पर सुनिएगा प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता नव्य न्याय भाषाया वैशिष्ट्यम। चित्रपट संगीत कल रात 8 बजे सबरस 8:30 पर और 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां और रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। नथुलाल निवासी ग्राम गिरधरपुर गोंडवा थाना होलागढ़ प्रयागराज सूचित करते हैं कि त्रिलोकी 14 अप्रैल 2026 से भोपतपुर से लापता हैं। त्रिलोकी के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 25 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा बदन और चेहरा लंबा है। त्रिलोकी के विषय में कोई भी सूचना आप थाना थरवई प्रयागराज को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7054515838। इंद्रावती निवासी ग्राम ललई थाना 12 प्रयागराज सूचित करती हैं कि ममता 13 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थल से सुबह 11 बजे से लापता हैं। ममता के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 25 वर्ष, ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर, रंग गोरा, इकहरा बदन और चेहरा लंबा है। ममता के विषय में कोई भी सूचना आप थाना 12 प्रयागराज को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7388064767। ये थी खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आपको सुनवाते हैं एक देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। 6:20 होने वाले हैं, संस्कृत समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्तवार्ताहरसम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षासहयोगं परस्परविश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् AI इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थव्यवस्थां प्रौद्योगिकी विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायि प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें तमाब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिकसङ्कटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिकमाध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः, स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेन अपि खाद्यान्नस्य न्यूनं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुषमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिककार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुषमंत्री प्रतापराव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्यां अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45 निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्य कार्यक्रमेण सह हुगलीनद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत

0: पंचो राम राम।
1: कहो भोला भैया, का हाल चाल बा हो?
0: बहुत बढ़िया बा हो भैया, देखा एकदम हाल चाल तो ठीक बा।
1: हाँ।
0: लेकिन जो मौसम बाटे ना, तई के ठंडा गरम होत बटे, एके वजह से जो नहाए शरीर में तनी हरारत बनी बटे।
1: और एहो भोला भैया,
0: हाँ
1: देखा ई जौन मौसम का जौन उलट फेर होत बा हो,
0: हाँ हाँ हाँ
1: देखा अब धीरे धीरे जौन है गर्मी अब के साथ साथ अब बरखा के भी टेम आवत है। तो किसान भैया बहनी हरिन का हम तो यही कहब कि सजग रहें।

0: काहे कि भैया अपन खेती किसानी में भैया जौन धान के अपन नर्सरी किए ना वही,
1: हाँ
0: तो धान
1: भैया
0: की नर्सरी का भी ध्यान रखें, टेम टेम से अपन जौन है सिंचाई करत रहें,
1: बिल्कुल भैया
0: और साथे साथ जौन भाई देखा खरपतवार हो, कोनो रोग बेरामी घेरे हो, तो वहाँ के जौन है उपचार करत रहें, ताकि अपन जौन है धान की नर्सरी भी बढ़िया रहे, और साथे साथ भैया अपन खेत की जो उन्हें तैयारी भी करें हो।
1: हम कहे भैया अपन जो उन खेत में नर्सरी डाले हैं
0: हाँ हाँ
1: तो ऐसा में कैसे निश्चिति में बाटे, ठीक ठाक है, कोनो दिक्कत वाली बात तो नहीं बा?
0: अब ए हो भोला भैया, देखा अपन जोन अपन किसान भैया बहनी बा, तो देखा बहुत से किसान भैया बहनी हरेन के अपन जौन नर्सरी तो बढ़िया बा, और साथे साथ बहुत से किसान भैया बहनी हरेन अपन जौन धान की नर्सरी केहले हमें, तो कतहूँ कतहूँ तो ये देखा जात बा कि भैया देखा जौन नर्सरी बा कहूँ कहूँ देखा वो पियर आए गए हो, और कहूँ कहूँ भैया बहुतन किसान भैया बहनी हरिन के देखा अपन जौन नर्सरी के जौन धान के बेहन बा कहूँ देखा पातर पातर देखा सफेदी रंग ले लीन है हो, तो अपन किसान भैया बहनी हरिन सजग रहें, और हम कही भैया विशेषज्ञ भैया हरिन से जाए के राय लें, समझें बूझें जौन दवा दर्पण जौन छिड़काव कहें वो तरीका से अपन नर्सरी की देखभाल करें।
1: बिल्कुल भैया देखा यह का होते ना कि जो नर्सरी होत धान के
0: हाँ
1: यह शुरुआत अटे, अगर देखा है शुरू में जो ना है अगर हमार पौधा अच्छा मजबूत तैयार हुई तो फिर जो धान के जब रोपाई हुई तो
0: हाँ
1: वो मजबूती से तैयार हुई।
0: कह गया, और साथे साथ एक बात हम ये और कह भोला भैया कि जौन किसान भैया बहनी हरिन के अपन खेत जौन है खाली बा, जौन खेत का भैया देखा ही गर्मी में जुताई कई दिन है, तो बहुत अच्छा टेम बा कि अपन माटी के जौन है जांच परख जरूर करवा लें,
1: बिल्कुल
0: काहे
1: भैया
0: कि माटी के जांच परख से ही पता चलत हो कि माटी में कौन तत्व की कमी बा, अपन जौन फसल हम ले जाए की तैयारी बा वो फसल में कौन कौन से तत्व की महत्ता बा, तो
1: बिल्कुल
0: ई जौन कम ज़्यादा भैया जौन हेर फेर की जौन यह समस्या बा माटी के गुणवत्ता में, तो एक ही जानकारी हो जाई, और साथे साथ अपन माटी की गुणवत्ता बनी रही, और तौर तरीकों जानकारी हो जाई।
1: बिल्कुल भैया देखा एकदम पते वाली बात कहा कि जांच तो बहुत ही जरूरी बा।
0: हाँ
1: और एका समझें किसान भैया है तरीके से कि देखा जिससे हम अपने कोनो चीज़ शरीर में
0: हाँ
1: तकलीफ होते तो जब हम जांच करा ली थी कि ओमे का तकलीफ बा कौने कारण से बा, तो देखा वही हिसाब से जब होथिन डॉक्टर वैद्य उपचार करत थे।
0: उपचार करत है।
1: तो यही तरह से जब माटी के जांच हो जाते तो हमको मालूम चल जाता कि हमारे खेत के जो माटी है हमें का गुणवत्ता है, कौन कमी है, और जौन फसल ले जाते ओकरे लिए कौन कौन चीज़ के और ज़रूरत बाटे
0: हाँ,
1: वो अनुसार ओके उपचार कीन जा सकत है।
0: और साथे साथ एक बात और ही जानब जरूरी होता है कि भैया देखा अपन किसान भैया बहनी है कि अपन खेत के जौन माटी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कौन माटी भैया जैसे दोमट माटी है चिकनी माटी है कि जौने में कि अपन जल भराव स्थिर रहे, तो ऐसे फसल जैसे कि धान के भैया देखा रोपाई के समय भी जल के भराव की जरूरत पड़त है, जल की स्थिरता हो जरूरी बा, तो किसान भैया बहनी हरिन से हम भोला भैया तो यह है कहा वो कि अपन जौन माटी की गुणवत्ता देख के समझ बूझ के ऐसे खेत में अपन धान के रोपाई करी हैं, ताकि पानी की जौन जरूरत भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई की जरूरत ना पड़े,
1: बिल्कुल भैया
0: अपन फसल भी बढ़िया रहे, लागत भी कम लागे, और अपन जौन भी फसल की पैदावार होए वो बढ़िया होए।
1: बिल्कुल भैया देखा एक बात और कहा
0: हाँ हाँ
1: कि
0: बतावा
1: भैया
0: हो।
1: देखा अब बरसात के मौसम आवे वाला बाटे,
0: हाँ हाँ
1: अब कभो भी शुरू हो सकत है। तो और दूसरी चीज़ हमारी जो फसल के अब तैयारी है वो धान के है
0: हाँ हाँ
1: तो एमें पानी की बड़ी ज़रूरत होते, तो ऐसे में का है ना किसान भैया इनके देखा नहर के भी बड़ा आश्रित होते हैं किसान
0: कह गया
1: भैया,
0: कह गया।
1: तो ऐसे में जो हमार नाली वगैरह हैं उनका साफ सफाई भी समय से कर लें,
0: हाँ हो
1: इसलिए कि भैया देखा जब बरसात आए जाते और नहर के पानी आए जाते
0: हाँ हाँ
1: तो अगर हमें सफाई नहीं है तो बहुत सारा पानी हमारे जो है ख़राब हो जाते,
0: कह गया
1: रास्ता में रुक जाते, बह जाते। तो ऐसे में नाली के सफाई करके अपने खेत तक जो नाली आए हैं
0: हाँ हाँ
1: ओके बढ़िया से मेड़बंदी कर दें ताकि पानी इधर उधर ना छटके, और सीधे जो ना है तो बरसात के पानी

0: चाहे नहर के पानी हो, तो
1: हाँ
0: अपने खेते तक पहुंचावा जा
1: ये तो
0: सके।
1: बहुत निक बात बताया भोला भैया। हम तो ये मन की बात हम समझ गए कि भैया जैसे कि जौन नहर बा, नहर में भैया देखा जल भराव होत है, तो जौन नहर से जौन भाई देखा लिंक जौन बा नहर से जो भी
0: नाली
1: नाली
0: जो
1: नाला
0: जोड़ी गई
1: बा
0: है। हाँ
1: है, तो मैं तरह तरह के घास फूस साथे साथ बिल कांदर हुई जात है,
0: हाँ
1: तो जौने से कि पानी आपन जौन बहुत जौन है खराब हुई जात है, इधर उधर बह जात है, तो ई वजह से किसान भैया बहनी हरे आपन खेत के अगल बगल की जौन नाली नाला ओका साफ सुथरा करें, बढ़िया से डाँड में बांध लें
0: बिल्कुल भैया,
1: ताकि
0: मिल के
1: पानी
0: जो ना
1: जौन
0: है
1: है इधर
0: अपन
1: उधर न बिखरे।
0: भाई, जितना जने का पानी हो रास्ता से निकलत हो
1: हाँ
0: नाली से, सब जने मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग कहके
1: कही गया।
0: और का बढ़िया से बनाए लें, साफ सफाई कर लें, क्योंकि
1: हाँ
0: समय अब जो ना है आहा नहीं,
1: हाँ
0: और कभो भी देखा पानी आ सकत है नहर में, और बरसात भी अपन कभो भी प्रभाव दिखा सकत है।
1: और साथे साथ बहुत से किसान भैया बहनी सक्षम बा कि भैया बहुतन के किसानन के जौन जागरूक हैं और वो अपन निजी अपन सिंचाई के साधन की व्यवस्था भी केले हैं,
0: हाँ
1: तो ऐसे किसान भैया बहनी अपन धान के अपन रोपाई भी जौन है बिल्कुल तैयारी बा। बहुत से किसान भैया बहनी हैं रोपाई कई दिन हैं, तो अब जैसे अपन सुविधा बा किसान भैया बहनी हरिन अपन वैसन खेत की तैयारी करें और साथे साथ अपन जो है धान के रोपाई की
0: हम
1: बात का ध्यान
0: कहे
1: रखें।
0: भैया जो है आज अपने पंचायती में का का हम लोग अपने पंच भैया रन के लिए आए हैं, ओका बताए दे, बड़ा उत्सुकता से वो इंतजार करते हैं कि आज का हम सुनब जो ना है।
1: अब ये तो भाई देखा ये पते की बात बा, काहे कि भैया आज अपने किसान भैया बहनी हरिन का कार्यक्रम लाए हो। हाँ अब देखा गीत गौनाई तो होता है बा
0: बिल्कुल
1: रोज साथ
0: भैया,
1: साथ, एक ये अलावा और कौन कार्यक्रम लाया
0: भैया
1: हो।
0: देखा गीत गौनाही में आज लोकगीत में
1: हाँ
0: आप फूलचंद शर्मा और साथी के जो है विकास गीत है,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: साथ ही साथ देखा भैया लोक भाषा कविता पाठक दिन आ जाए,
1: हाँ हाँ
0: तो एहमे जो है अशोक सिंह बेशरम जो है
1: हाँ हाँ
0: इनके हम कविता पाठ अपने पंच भैया इनके सुनवाओ,
1: अच्छा
0: और साथ
1: अच्छा
0: ही साथ देखा भैया जो ना भाई इतनी देर से हम लोग बात बत कही करते रहे
1: हाँ
0: कि धान की नर्सरी की देखभाल,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: बातचीत है
1: अच्छा
0: जे पे डॉक्टर प्रियंका सिंह से राकेश कुमार भैया बतियाए हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो यह हमारे किसान भैया सुनिए तो जरूर उनका कुछ ना कुछ लाभ मिली। हम तो कहे पहले गीत गौन ही हो जाए
1: हाँ हाँ
0: फिर आगे बात बत कही हो, तो
1: हाँ
0: पंच भैया रहे देखा फूलचंद शर्मा और साथी के आवा विकास गीत सुना और हम हो सबे सुनी।
1: हाँ हाँ तो सुनवा दिया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: हाँ भैया, देखा संदेश हो ही गया, और साथ ही साथ भैया देखा विकास गीत जो है फूल

0: चंद सरमो संघात इनके किसान
1: बहुत
0: भैया बहनी हैं
1: बढ़िया
0: सुने,
1: भाभी है, बहुत बढ़िया।
0: और देखा मन हरियर होइगा। और साथे साथ भैया देखा एक बात और हम कहब हो,
1: हाँ भैया बताओ।
0: किसान भैया बहनी हैं अपन, जैसे कि धान के जौन फसल तो देखा खरीफ में जौन इसका बड़ा महत्व बा, तो ज़्यादा किसान भैया बहनी हैं जब धान की फसल की पैदावार करत हैं। मुला बहुत से ऐसे अपने गांव गिराव में खेती बाड़ी में देखा कि बहुत से जैसे बलुई माटी होत है, कुछ ककरीहिटियों माटी होत बा, तो ऐसे जमीन में देखा खेत किसानी में किसान भैया बहनी ने देखा जैसे कि बाजरा की भी खेती करत हैं, मक्का की भी खेती करत हैं, यानी जौन सह फसली यानी मिश्रित खेती का जौन विधान बा, तो ऐसे भी किसान भैया बहनी हरिन का अपन फसल में बढ़िया लाभ मिलत है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और एक फसल के साथ साथ दुई फसल आए, दुई आए तीन फसल, जैसे कि मक्का की खेती किसान भैया बहनी हरिन जौन करत हैं, तो मक्का की खेती के साथे साथ भैया देखा जैसे मूंग है, उड़द है, यहाँ की जौन है मिश्रित खेती कई सकत हैं।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: और साथे साथ भैया देखा जैसे बाजरा की खेती किसान भैया बहनी हरिन करत हैं, तो साथे साथ बाजरा के जौन बिया बा, साथे साथ अरहर के जौन बीज बा, दोनों मिलाए जुलाए के भी अपन खेत जौन छिड़काव करत हैं तो बोवत हैं, तो इससे भी अपन फसली यानी मिश्रित खेती की बढ़िया पैदावार होत।
1: बिल्कुल भैया, देखा आप बहुत बढ़िया बात कहा कि देखा मिश्रित खेती से किसान भैया ने ई समझाएं
0: हाँ।
1: कि ए तरह से लाभ बा। मान ला दुई मेल तीन मेल के जो नहाए तरह तरह के अपन खेती करे हैं एक साथे,
0: हाँ।
1: और कोनो भी कारण से, मौसम के कारण से या कोनो माटी के गुणवत्ता के कारण से कोनो फसल खराब हुई हो जाते,
0: हाँ।
1: तो लेकिन दूसर फसल कम से कम तैयार रहा है, तो ओके जो नुकसान होता है ओके भरपाई दूसरे फसल से कीन जा सकत है।
0: कह गया
1: तो ऐसे में भैया किसान भैया जो नहाए मिश्रित खेती की तरफ भी विचार करके जो नहाए खाली एक ही तरह खेती धान गेहूं पे ना आश्रित हो,
0: हाँ हाँ
1: और अन्य जो नहाए साथे साथे जो उन भी फसल उनका वो मौसम में उपयुक्त है
0: हाँ हाँ
1: ओके जरूर जो नहाए लगावें ताकि ओके लाभ मिल सके।
0: और साथे साथ ये हो भोला भैया देखा अपन जौन है देखा जौन मोटिया अनाज बा, एक एक खाद्यान्न मन जौन भी अपन फसल किसान भैया बहनी हरिन तो लेते हैं। बोला जैसे कि साग सब्जियन का भी खेती का बड़ा महत्व होता है, और जैसे कि फलदार जौन छुटवार पेड़ पौधन बा एक वर्षी दुई वर्षी, तो फिर ऐसे में जैसे कि किसान भैया बहनी है बहुत से पपीता की भी खेती करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो पपीता की खेती तो करें जैसे कि किनारे किनारे खेत के डांड के है बीच में अपन जौन है क्यारी बनाए के अपन फसल ले लें, और साथे साथ जौन भी बीच में ऐसे जगह छोटी मोटी जगह जौन क्यारी नुमा बचे, तो ऐसे में किसान भैया बनी साग सब्जियन के अलावा और भी जौन छुटवार जौन है पौधा वाले हैं वहाँ के भैया देखा अपन रोपाई कर सकत हैं,
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: तो उससे भी चार पैसा की आमदनी होत है।
1: कुल मिला के भैया देखा यह है कि मिश्रित खेती अगर करें किसान भैया तो कई लाभ है, यह है
0: हाँ
1: नुकसान नहीं बा।
0: हाँ हाँ
1: भैया देखा हम कहे कि आज जो है कहत रहे कि लोक भाषा कविता पाठ के भी आज दिन है,
0: हाँ हाँ
1: तो हमारे किसान भैया रन भी जो है इंतजार करते हुए कि कब जो ना है बोला भैया कब जो ना है सुनवही कविता,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम कहे आवाज़ सुनवाए दिन जाए तो फिर बात बत कही कीन जाए।
0: हाँ हाँ तो
1: भैया
0: सुनवा
1: देखा
0: दे।
1: आज लोक भाषा कविता पाठ में अपने बीच में हैं अशोक सिंह बेसरम, तो इनके लोक भाषा कविता पाठ पंच भैया सुने।
0: हाँ हाँ सुनवा दे।
2: पंचो देखा अपने गांव में तब से अब में काफी फर्क आई बा, बड़ा अंतर आई बा। गांव के रीति भांत आपस के बात व्यवहार धीरे धीरे अपन पूरा गांव सहराई लागबा। अपने पुराने गांव में का का रहा, कैसे परिपाटी रही, कौन संस्कृति रही, का परंपरा रही, तो यही संदर्भ में एक गीत प्रस्तुत बाय आप सबके बीच कि

महकै के घिया नान महकै मोहाल भई महेरी गौन राई गवा। अरे कहाँ कहाँ हेरी गौन। दूसरे बंद में देखें और काका हैरान, पहनावा भी तब जैसा, अब थोड़ा सा अंतर आई बा कि

छोरी अब मनिहारिनी के अब पहले चूरी पहिरावे खातिर मनिहारिन फेरा लगावे भैया गांव के गलिन में के अब मनिहारिनी अरे लगावे नहीं फेरी गांव नहीं हेराई गवा अरे कहाँ कहाँ हेरी गांव नहीं हेराई गवा। अगला बंद देखे कि पाती पाती रीति भांति पतरी अव दोना। अब तो भैया फाइबर वाली पतरी चले लगी बा बफर सिस्टम हो गया। अब पहले मनई एकदम पलथी मार के खाए महुआ के पाती वाली जौन बा दोना रहे पतरी रहे कोहड़ा के साग रहे का आनंद रहा के पाती पाती रीति भांति पतरी अव दोना अब काजर कजर औटा नाही माथे पे डिठोना। अब तो पेंसिल वाला काजर आए गए अब पहले तो कजरौटा वहां सा जाए के काजर

के तब जैसे भैया नाही तब जैसी भौजी। अरे नाही सिली चकरी, भैया घरे में पता लगाई ले 50% घरे में सिली चकरी जहाँ तो खरी न मिले। के नाही सिली चकरी, अरे न छानी न बड़ेरी, गाँव नहीं हेराई गवा और कहाँ कहाँ हेरी गाँव नहीं। और काका बदलाव आए कि फगुने म फगुआ न सवने म कजरी, अब कीता कीता बट गई बाबूजी कई बखरी। अंगने अंगने में भैया देवार मट गए, एक एक बीता ओसार मट गए कि फगुने में फगुआ न सवने में कजरी, अब कीता कीता बट गई बाबूजी कई बखरी। अरे नाही सावा को दौ नाही घुघुरी न लाटा, अब छोड़ी न कमोरी औ मोहाल होइ ग माठा, कि छोड़ी न कमोरी औ मोहाल होइ ग माठा। गांव के जोन बदलाव आई बा भैया, ई बदलाव जोन गांव के बदलाव बा देखे

ये अंतिम पंक्ति देखें कि पूरा खा पूरा निया के से जरा हैराने और पेशी दे रोज पर धान जाए थाने कि पूरा खा

के पहरा, एबीसीडी सुनी के पराई ग ककहरा, एबीसीडी सुनी के पराई ग ककहरा। अब मने मने मनई में बढ़ी रही दूरी, मोहे राम राम पे बगल ली है छूरी। किलो किलो बटी गई, किलो किलो बटी गई, अरे धराय पसेरी गव नहीं हेराई गवा। कहाँ कहाँ हेरी काउ काउ कागा करई, अरे बैठी के मुड़ेरी गव नहीं हेराई गवा। कहाँ कहाँ हेरी गव नहीं। एक कविता और देख ले एक दुई बंद भैया, वो पुराने गांव के संदर्भ से बा। जैसे पुराना गांव रहे, सबेरे मुर्गा बांक दे पर भाती गावत, जब दादी माई निकरे जाते पर जतसार गावे। गांव में होलई लागे, फगुआ लागे, रामलीला होई, चौपार में हुक्का पानी, सब एक जगह मिल बैठ के आपस के प्रेम परंपरा रही। लेकिन ईर्ष्या में, द्वेह में, डाह में ये टूटत चला जात बजौन परिवार। इही संदर्भ में

ना लागे। और भैया देखें गांव में कि सगल सेवारे बसंत ऋतु की परिकल्पना करें कि सगल सेवारे सरसों फूली तितली नाचे गावे, सगल सेवारे सरसों फूली तितली नाचे गावे, बौरे आम

अंतिम पंक्ति देखें कि उखी औरे माऊ की पेरानी सोंध सोंध गुड़ महके, सोंध सोंध गुड़ महके भैया सोंध सोंध गुड़ महके, ठोकवा लाटा घुघुरी देखी के देवतन के जीव बहके, तो रिश्ता ही

0: हाँ भैया,
1: हाँ, हो भोला भैया।
0: देखा कितना बढ़िया रहा अशोक सिंह बेशरम के लोक भाषा कविता पाठ।
1: हाँ,
0: लगा भैया कि देखा फिर से हम अपने घरे पहुंच गए और सारा वही बात बत कही एकदम दिमाग में चले लागे
1: अब
0: इतना
1: देखा
0: आने
1: जौन
0: के।
1: अपन देखा गांव गिराव के, जौन देखा भाषा रही, जौन बा रीत रिवाज बा, जौन भी तौर तरीका भैया, देखा अपन जौन घर के गांव के, जौन देखा खपरा वाला घर, हाँ, और साथे साथ कौवा अपन जौने बनवारी पर काँव काँव करत रहें,
0: बहुत बढ़िया,
1: और
0: बहुत सुंदर
1: साथे
0: सर।
1: साथ देखा दादी अम्मा जौन है, जौन तरह अपने बड़की दोहनी माँ, जौन है दूध जौन है जमामय पकावय, जौन सोन सोन महकय, तो वो देखा अपन कविताई के माध्यम से।

0: भैया अशोक सिंह विश्रम जौन है, आपन जौन है, गांव के सब रीत रिवाज का जौन है, देखा कविता
1: जिक्र
0: के माध्यम
1: करें।
0: से सुनवाइन। और साथे साथ भैया देखा अपन खेती किसानी वाली जौन बात होत रही कि धान की नर्सरी की देखभाल, भैया देखा डॉक्टर प्रियंका सिंह से राकेश कुमार मौर्य जी की बातचीत जौन है, देखा इबा तो हम समझित किसान भैया बहनी हरिन का सुनवाई दिहल जाए।
1: बिल्कुल भैया, देखा इस
0: और
1: समय सुनवावे की जरूरत बाटे।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो भैया देखा सुने और साथे साथ गुने भी।
1: बिल्कुल भैया।
0: हाँ तो सुन
2: किसान भाई, खेती किसानी में यह समय जोन बा है, जोन खरीफ के मुख्य फसल धान होत है, ओकर बेहन डालत बाटे न, काफ़ी किसान भाई डाल भी दे बाटे न। तब बात आवत है बात की कि भाई धान के नर्सरी अगर डाल दे बाटे तो ओकर देखभाल कैसे करें, जौने से कोनो भी रोग दोख ना लागे, नर्सरी बढ़िया होए, ये आगे चल के धान का फसल पौध बढ़िया होए। सब पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटे डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। एक विशेषज्ञ के नाते हमारे किसान भाई के बतावें कि धान के नर्सरी जौन बेहन डाले बाटे न, ओकर देखभाल कैसे करें, बतावें आप।
3: सर्वप्रथम तो
2: जी
3: धान की जब हम पौध डाल देते हैं
2: हाँ
3: तो उसके बाद चाहे पौध हम किसी भी विधि से तैयार करें,
2: जी जी जी
3: लेकिन अंकुरण से पहले हमें सबसे पहले उनको पक्षियों से सुरक्षित करना
2: जी
3: अनिवार्य
2: जी
3: रहना चाहिए।
2: यानी
3: तो
2: आप कहा
3: ऐसी
2: एक
3: व्यवस्था
2: मतलब
3: करनी चाहिए।
2: जी आप कहा एक मतलब कि अगर धान को नर्सरी डाल दे बटन, अगर जमाव ना ही आए तो पक्षियों का खाई सकत है,
3: हाँ
2: खाए
3: बिल्कुल
2: ले ही तो जमाव कम होए,
3: कम
2: तो
3: हो
2: जरूरत
3: जाएगा।
2: बात पक्षी से सुरक्षित किया
3: हाँ
2: जाए।
3: बिल्कुल।
2: जी जी
3: उसके अलावा पर्याप्त नमी का भी प्रबंध रखना चाहिए। पौध की बढ़वार के लिए
2: जी जी जी
3: स्वास्थ्य हेतु सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, अगर निराई गुड़ाई के बारे में भी हम सोचते हैं तो हाथों से ही करने की प्राथमिकता देनी चाहिए, इससे
2: अच्छा
3: पौध
2: अच्छा
3: खराब नहीं होती है।
2: यानी हाथ से निकाल दें तो जौन धान उखड़े के डर ना रहे।
3: हाँ
2: अब बात
3: बिल्कुल।
2: आओ तो मैं सिंचाई बराबर हमेशा हो चाहे, आप नमी की भी बात करें तो सिंचाई के बारे में भी कुछ बताएं आप।
3: नर्सरी जब हम लगाते हैं या पौधशाला लगाते हैं तो बुआई के पहले हफ्ते में रोज शाम के समय हल्की सिंचाई देना अच्छा होता है।
2: अच्छा।
3: दूसरा, अंकुरण होने तथा पौध बढ़ने पर 2 से 3 सेंटीमीटर तक पौधशाला में पानी लगाना चाहिए।
2: यानी जब तक अंकुरण ना ही रहा तब तक रोज हल्की सिंचाई
3: हल्की
2: शाम का कई
3: सिंचाई
2: देख
3: शाम के
2: चाहे,
3: समय।
2: और जब अंकुरण हो जाए तो 2-3 सेंटीमीटर पानी हमें लगाए देख चाहे।
3: और इससे हमें एक फायदा ये भी होता है कि खरपतवार भी कम आएंगे, पौध में लोहे या आयरन की कमी कम होगी,
2: जी
3: पौध अच्छे से तैयार भी होगी। और दूसरा जो है, सिंचाई जब भी करें तो हमेशा शाम के समय में करें।
2: जी। अब बताओ तो बात ये आवत कि जो खरपतवार होता है ओकरे नियंत्रण बदे का करे के चाहे।
3: तो जैसा अभी मैंने बताया कि खरपतवार के नियंत्रण हेतु सबसे अच्छा हाथों से निराई गुड़ाई ही प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।
2: रासायनिक विधि भी कौनो बा।
3: और अगर रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो 120 मिलीलीटर 50 EC ब्यूटाक्लोर या फिर 30 से 40 ग्राम प्रेटीला क्लोर को 60 से 70 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
2: अच्छा
3: और
2: अच्छा
3: इसका छिड़काव बुआई से 4 से 5 दिन के भीतर करना चाहिए।
2: अच्छा 4-5 दिन के पहले कह दें खरपतवार
3: हाँ
2: नियंत्रित हो
3: बिल्कुल
2: जाए, मतलब जम्बई न करी है वो।
3: बिल्कुल।
2: अब बात ये आवा था कि भाई कौन कौन कीट बेरामी भी लग सका था पौध में, धान के बेहन में, ओकरे बारे में भी कुछ
3: हाँ,
2: बताओ आप।
3: धान की पौध में लगने वाले ये 3 कीट मुख्य हैं,
2: कौन
3: जैसे
2: कौन।
3: कि पहला पत्ता लपेटक कीट,
2: जी
3: दूसरा चना छेदक कीट
2: तना
3: तथा
2: छेदक,
3: तीसरा हिस्पा कीट। ये धान की पौध में लगने वाले सामान्य कीट हैं,
2: यानी पत्ती लपेटक जोन होते हैं, तना छेदक और
3: और
2: हिस्पा के।
3: हिस्पा कीट।
2: अच्छा, इनके बचाव के लिए क्या करे के चाहे।
3: बचाव हेतु 2 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
2: जी।
3: और लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी या पौधशाला के लिए 60 से 70 लीटर घोल पर्याप्त रहेगा।
2: यानी 60 से 70 लीटर पानी में घोल बनाए के क्लोरोपायरीफास के छिड़काव कर दें तो नियंत्रित हो जाए।
3: हाँ बिल्कुल।
2: अब बात आवत कि धान के पौध में जो कृमि की समस्या हो तो एकरे बारे में भी कुछ बताओ, क्या लक्षण हो तो कैसे निजात मिले, एकरे बारे में भी कुछ बताओ।
3: तो इसके लक्षण तो इस प्रकार हैं कि ये सफेद रंग के छोटे कीड़े होते हैं जो
2: अच्छा।
3: पौध की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं सर्वप्रथम।
2: जी।
3: अब ये तथा ये धान की पौध में गांठ बना देते हैं, जिस इस गांठ के कारण जिससे कि पौध की बढ़वार रुक जाती है तथा पौध पीली पड़ जाती है।
2: यानी पौध में कहूँ गांठ पड़ जाए, पौध पीली पड़ जाए तो समझ लेंगे सूत्रकृमि लग गई
3: हाँ
2: बैठे।
3: बिल्कुल।
2: अच्छा,
3: तो
2: ओकरे
3: जब आपने
2: रोकथाम।
3: लक्षण पहचान लिया तो उसके बाद
2: जी
3: रोकथाम हेतु कार्बोफ्यूरान 3G की 3 किलोग्राम मात्रा का प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए
2: जी जी
3: सूत्रकृमि से रोकथाम हेतु।
2: तो इसे नियंत्रित हो जाए सूत्रकृमि।
3: जी हाँ।
2: अब बात आओ तो बुकनी भी रोग लागत है का, कौन
3: बकानी
2: बकानी रोग। अच्छा, एकर का लक्षण है, का उपचार है, बताओ।
3: बका

0: पानी रोग का लक्षण है इसमें, जो कि हर किस्म में नहीं पाई जाती,
1: कौनों कौनों
0: लेकिन
1: किस्म
0: किसी
1: पाई?
0: किसी किस्म में ये बकानी रोग पाया जाता है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: सबसे पहले तो इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि जिस पौध में रोग लगा होगा वो पौध जरूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी
1: अच्छा,
0: तथा कमज़ोर और पतली रहेगी।
1: आप कहा है कि मतलब कुछ धान के फसल में जो बेहन बाटे है वह में अगर कोनो पौध बहुत लंबी होगी पतली होगी बे सामान्य से, तो समझ लें
0: हाँ,
1: कि वो बीमारी ओकरे
0: कमज़ोर,
1: बा।
0: पतली और सामान्य से लंबी, अलग दिखने वाली। तथा इस रोग के बचाव हेतु

0: बहुत बहुत लंबी होगी, पतली होगी वे सामान्य से, तो समझ लें
1: हाँ,
0: कि वो बीमारी
1: कमजोर,
0: करेगा।
1: पतली और सामान्य से लंबी, अलग दिखने वाली। तथा इस रोग के बचाव हेतु पहला काम तो हमें ऐसी पौध की रोपाई ही नहीं करनी चाहिए,
0: जी, उसका
1: ठीक
0: उखाड़
1: है?
0: दे तो
1: उसको
0: ज़्यादा ठीक
1: उखाड़
0: है।
1: देना ज्यादा अच्छा है।
0: जी, और क्या करें
1: और
0: चाहे।
1: अगर ये रोग पूरी नर्सरी में दिखने लग जाए, नर्सरी के ज्यादातर पौध में ये रोग बकानी दिखने लग जाए, तो पूरी नर्सरी को ही नष्ट कर देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: ऐसे पौध की ट्रांसप्लांटिंग या फिर रोपाई नहीं करनी चाहिए,
0: नुकसान हो सका
1: नुकसान
0: था।
1: हो जाएगा।
0: अच्छा, रोपाई
1: तो
0: करें तो स्वस्थ पौधा
1: स्वस्थ
0: का
1: पौधे
0: करें।
1: की करें। दूसरी चीज, अब वो नर्सरी नष्ट करके दूसरी जगह पे हमें तुरंत नई नर्सरी लगा देनी चाहिए।
0: अच्छा, दूसरे दूसर बीज ले आए, बीज ले आए कि डाल दे
1: बिल्कुल।
0: चाहे।
1: और
0: अब्बा।
1: दूसरी चीज, जब भी पौध की रोपाई करने लगे, तो इस चीज का ध्यान दें कि पौधे के अच्छे स्वास्थ्य हेतु 1 ग्राम बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में घोलकर धान की पौध को लगभग आधा से लेकर 1 घंटा तक इस घोल में डुबा कर रखना चाहिए। उसके
0: अच्छा,
1: बाद पौध की रोपाई करने से स्वस्थ पौधे तैयार होंगे।
0: यानी कोनो रोग ना लागे तब।
1: बिल्कुल।
0: अब बात आवत है नाइट्रोजन की कमी अगर हो जाए तो का करे के चाहे, ओकरे लिए बताऊँ। अब का
1: और
0: लक्षण है, का पहचान है कि
1: नाइट्रोजन
0: नाइट्रोजन
1: की
0: कमी।
1: कमी का पहचान या लक्षण, पहला तो ये है कि पत्तों का रंग पीला होने लगता है।
0: अच्छा।
1: पहले नीचे से शुरुआत होगी, पीला पड़ने की शुरुआत पौधे के नीचे वाले पत्तों से, निचले पत्तों से शुरू होगी। अगर ये कमी लगातार या निरंतर बनी रही, तो धीरे धीरे ऊपर के भी पत्ते पीले
0: पियर
1: पड़
0: हो
1: जाते
0: जाते,
1: हैं।
0: यानी जब बेहन पियर आ जाए, एकदम पियर हो जाए,
1: हाँ,
0: तो समझ ले कि हमें नाइट्रोजन
1: नाइट्रोजन की
0: कमी बा।
1: कमी है।
0: अब वो करे लिए का करे के चाहे, रोकथाम के लिए।
1: नाइट्रोजन की कमी के रोकथाम के लिए 10 से 12 किलोग्राम यूरिया को प्रति 1000 वर्ग मीटर नर्सरी में उपयोग करना चाहिए, जिससे
0: अच्छा।
1: कि नाइट्रोजन की रोकथाम की जा
0: यानी
1: सके।
0: यूरिया को हमें डाल देख चाहे।
1: हाँ,
0: अब बात आवत तो आयरन की कमी जैसे हो जाता, पियर आ जाता, तब वो मोर्चा यस लग जाता है, तो करे लिए का करे चाहे। लोहा कमी का लक्षण है, का उपचार है बताओ यार।
1: यदि यूरिया डालने के बाद भी पौध पीली ही बनी रहे, तब समझ जाना चाहिए कि ये नाइट्रोजन के साथ साथ आयरन की भी इसमें कमी है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे में पौध की ऊपरी पत्तियां पहले पीली पड़ेंगी, और लगातार कमी बनी रहने पे नीचे की भी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी।
0: जी।
1: धीरे धीरे करके पौध सफेद रंग में बदल जाएगी और फिर सूख जाएगी, और सूखने के बाद जो है पौध भूरे रंग की नजर आने लगेगी। तो ये हो गया लोहे की कमी का लक्षण।
0: अच्छा।
1: उपचार के लिए सबसे पहला काम तो नर्सरी में पानी का उचित प्रबंध रखें,
0: यानी नमी
1: इससे
0: रहे चाहे
1: नमी पर्याप्त मात्रा में रहने पर लोहे की कमी
0: ना होए,
1: नहीं होने की जो है अनुपात कुछ कम रहता है,
0: संभावना कम रहा था।
1: संभावना कम रहेगी।
0: जी।
1: दूसरा जो है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का 0.5% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और तीसरी एक विधि है कि आधा लीटर आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
0: जी। इतना रही बात आयरन की कमी के। अब बात आवत है, मैं जिंक के कमी से भी देखे में आवत तमाम रोग रहा था, तो एकर का लक्षण, का उपाय, उपचार वगैरह बारे में भी कुछ बताऊँ।
1: जिंक की कमी होने पर जो है पौध में जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे या चकत्ते दिखाई पड़ने लगते हैं, और निरंतर कमी बनी रहने पर पूरा पत्ता ही सूख जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इससे उपचार हेतु पहला तो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का 0.5% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी।
1: और दूसरा है कि हम जो है 200 ग्राम चूना को 100 लीटर पानी में घोल कर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे जो है जिंक की कमी पौध में नहीं होने पाएगी।
0: अच्छा। और का करे कि चाहे, माटी में भी कुछ करे
1: अगर
0: चाहे।
1: अगर जो है कहीं कहीं जो है मृदा, जो मिट्टी होती है, वहां की पौध में जिंक या जस्ता जिसको बोलते हैं,
0: कमी
1: उसकी
0: रहा
1: कमी
0: था।
1: मृदा में ही पाई जाती है। तो
0: जी
1: सब
0: जी
1: सर्वप्रथम अगर किसान भाई पहचान लेते हैं कि हाँ इस मृदा में ही जिंक की कमी है, यहाँ पौध नहीं अच्छे तैयार हो पाएगी,
0: या तो माटी की जांच कराए से पता चल
1: हाँ
0: जाए।
1: मिट्टी की जांच करा के बिल्कुल पता चल जाएगी। तो और ये भी मतलब आंका गया है कि देश में लगभग 50% मृदा में जो है जिंक या जस्ते की कमी है। तो इसलिए बुआई के समय ही मृदा में अगर हम 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव कर दे बुआई के समय ही,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: ऐसे मृदा में जिंक की कमी नहीं होगी, तो जिसका आधार जो है असर पौधों पर भी देखा जा सकता है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये तो रही बात भाई धान के नर्सरी में जिंक कमी, आयरन, नाइट्रोजन कमी से, और का सामान्य बात बताओ चाहिए कि देन नर्सरी की देखभाल करत रहें तो ठीक से हो जाए उनका नर्सरी, जैसे नमी पानी की कमी ना हो,
1: पानी की कमी बिल्कुल ना होने,

0: है, हमें निरंतर उसका ध्यान रखना चाहिए।
1: जी जी जी
0: और
1: जमाव
0: हल्की
1: पहले लोग
0: हल्की।
1: ये भी कहा थे कि जैसे मान लो जमाव नहीं भवा बाटे, जमाई शुरू होत बा तो दिन में तेज धूप हो तो ज्यादा पानी बा तो खराब हो सके तो पानी निकाल दे चाहे शाम को हल्की सिंचाई कर दे चाहे।
0: पानी निकालने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कि छिड़काव के वक्त कुछ अगर पानी ज्यादा पड़ गया तो थोड़ी सी नाली बना के एक व्यवस्था रखनी चाहिए कि ज्यादा पानी होने पर उसकी निकासी भी की जा सके,
1: नहीं तो खराब हो सकता,
0: खराब हो सकता है। इसीलिए हल्का छिड़काव ही करें नर्सरी में, हल्का
1: हल्की नमी
0: छिड़काव, हल्की नमी चाहिए,
1: हल्की सिंचाई करे चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, आप पाइन धान के नर्सरी के देखभाल के विषय में बहुत अच्छे तरीके से आप बताएं, किसान भाई आपके बातन का ध्यान रखें तो उनका नर्सरी बढ़िया हुए। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
3: बोला भैया।
2: देखा धान की नर्सरी की देखभाल ए पे देखा डॉक्टर प्रियंका सिंह से राकेश कुमार भैया कितना बढ़िया से पूछे ने बताएं।
3: हाँ हाँ।
2: और डॉक्टर प्रियंका सिंह दीदी भी जो नहा बढ़िया समझाई ने का
3: कहिए।
2: और हमारे किसान भैया हरेन देखा ऐसे में बहुत जरूरत रही है जानकारी के।
3: हाँ।
2: ये जानकारी से जरूर उनका लाभ मिली। और साथ ही साथ एक चीज और का भैया, देखा हम लोग पंचायती में रंग रंग के कार्यक्रम ले आई थी, लेकिन अपने किसान भैया हरेन कुछ नई जानकारी और कुछ नया हो सुने समझे चाहत हो तो ओकरे लिए अपन जो ना है विचार अपन प्रतिक्रिया दे सकत हीन।
3: हाँ।
2: ओकरे लिए माध्यम है हमार फेसबुक, ओप पे जाके भी अपन विचार साझा कर सकत हीन। साथे साथे जो ना है हमार जो व्हाट्सएप नंबर बा आकाशवाणी के, वहो पे जो ना है अपन संदेश भेज के अपन विचार दे सकत हीन।
3: हाँ।
2: तो पहले तो किसान भैया ने जल्दी से एक नंबर लिख लें।
3: हाँ, बताओ।
2: तो भैया देखा जो पंचायती नंबर रहा है 800-49-49-25-0।
3: हाँ।
2: हम कह भैया एकदम फिर से बोल दें।
3: हाँ।
2: कि 800-49-25-0। तो भैया देखा ऐप पे अपन विचार अपन जो ना है साझा करें। भैया देखा पंचायती में भी अब समय होता है कि पंच लोगन से विदा लीन जाए।
3: हाँ।
2: तो भैया देखा अपन ध्यान रखें, अपने पशुओं के ध्यान रखें, खेती बाड़ी समय समय से करत रहें।
3: हाँ।
2: तो पंचों
3: राम राम,
2: राम, राम।

ग्रामीणजन अभी अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं देश कान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रादेशिक समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और ख़ास तौर पे यहाँ एयरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी।

0: एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
1: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
1: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
1: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता, डॉक्टर कुबेर नाथ राय का रचना संसार।
1: नमस्कार साथियों, आज मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता आप सभी के समक्ष कुबेर नाथ राय का रचना संसार इस पर अपनी बातचीत रखूंगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित निबंधकार कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मत्सा ग्राम में हुआ। काशी से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। कलकत्ता में 1959 तक अध्यापन कार्य करने के बाद नलबारी महाविद्यालय असम में 28 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। असम में जब स्थितियां प्रतिकूल हो गईं, तब उन्होंने अपने गृह जनपद में आकर स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में प्राचार्य

में अपने निधन यानी 5 जून 1996 तक सेवा दी। बचपन से मेधावी रहे कुबेरनाथ राय जी ने कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लेखन का आरंभ माधुरी तथा विशाल भारत, जो क्रमशः लखनऊ और कोलकाता से प्रकाशित होते थे, में छात्र जीवन से लिखना आरंभ किया, किंतु पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की प्रेरणा से सरस्वती में वर्ष 1962 से वे कहते हैं कि उन्होंने सचेत रूप से लिखना आरंभ किया। उनका पहला ललित निबंध वर्ष 1964 में धर्मयुग में उसके तत्कालीन संपादक डॉ. धर्मवीर भारती ने प्रकाशित किया। जब उनकी पहली कृति प्रिय नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुई, वे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध के चिरपरिचित हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने निबंध में भी अपना क्षेत्र ललित निबंध को ही बनाया और अंत तक इसी विधा में लिखते रहे। उनके निधन से पहले प्रिया नीलकंठी से लेकर उत्तर कुरु तक 16 ललित निबंधों के संकलन प्रकाशित हुए। निधन के बाद मोहम्मद हारून रशीद खान के सहयोग से 5 निबंध संकलन और एक आलोचनात्मक किताब स्वामी सहजानंद पर प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त उनका एक काव्य संग्रह कथामणि भी प्रकाशित हुआ है, जिससे उनके कवि हृदय होने का पता चलता है। वैसे उनके निबंधों में उनके कवि मन की झलक हर कहीं दिखाई पड़ती है। उनका समग्र लेखन कुबेरनाथ राय रचनावली शीर्षक से 13 खंडों में प्रकाशित है, जिसका संपादन नर्मदा प्रसाद उपाध्याय और मोहम्मद हारून रशीद खान ने किया है। यह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा था कि गद्य कवियों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निबंध लेखन अपने आप में कठिन विधा है और उसमें अपनी उपस्थिति, बल्कि महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाना आसान काम नहीं, लेकिन कुबेरनाथ राय ने इसे जितनी सहजता के साथ साधा है वह आश्चर्यचकित करता है। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र की परंपरा में रखा जाता है। रचनावली संपादक ने इस संदर्भ में लिखा है, अपने अनेक निबंध संग्रहों में अपने लेखन को लेकर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा ललित निबंध की अवधारणा को लेकर भी अपने विचार स्पष्ट करते रहे हैं। अपनी कृति दृष्टि अभिसार में उन्होंने ललित निबंध को केंद्र में रखकर उस विधा के बारे में चर्चा की है। वे कहते हैं, ललित निबंध एक महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण वांग्मय है। इसमें व्यक्त दृष्टिकोण की युक्ति युक्तता इसी के अंतर्गत निहित रहती है, यही इसकी संपूर्णता एवं स्वयं पूर्णता है। इस तरह वे ललित निबंध को क्षितिज की तरह विस्तार देते हैं। राजशेखर के हवाले से वे कहते हैं कि वांग्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्र और काव्य। ललित निबंध की विधा में शास्त्र भी है और काव्य भी है। वे ललित निबंध की तुलना महाकाव्य से करते हैं और उनका मानना है कि ललित निबंध कोई शुद्ध मौज शौकिया मात्र आनंद से जुड़ी विधा नहीं है। इसमें एक व्यक्त या अव्यक्त जीवन दृष्टि रहती है। यह एक दृष्टि संपन्न विधा है, शुद्ध काव्य विधा नहीं है, और इसी कारण इसमें शास्त्र भी है और काव्य भी। हम पढ़ते पढ़ाते हुए निबंध को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, विषय प्रधान निबंध और विषयी प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंध मूल रूप से वैचारिक होते हैं और उनके केंद्र में विषय ही होता है, जबकि विषयी प्रधान निबंध ललित निबंध होते हैं, लालित्य से भरे हुए होते हैं और उसके बहाने एक विस्तृत दुनिया को रचते हैं। पाठकों को मनोभावों के ऐसे संसार में ले जाते हैं जिसकी उसने कल्पना भी न की होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको आकाशवाणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना है तो विषय प्रधान निबंध में निबंध लेखन आकाशवाणी से सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यात्रा करेगा और उसमें विचार होगा, इसी के आसपास चक्कर लगाएंगे। लेकिन विषयी प्रधान निबंध में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि निबंधकार आकाशवाणी से शुरू करेगा, वह आकाशवाणी के आरंभ की ओर जाएगा, आगे बढ़ते हुए इंदिरा चौराहे पर हो सकता है वह रुके और इंदिरा गांधी के जीवन में प्रवेश कर जाए। यदि वह दाहिनी ओर मुड़ गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के सौंदर्य पर बात कर सकता है, न्यायतंत्र पर बात कर सकता है, लोगों की इकट्ठी भीड़ को भी वह अपना विषय बना सकता है। यदि वह सीधे चल पड़ा तो हर चौराहे से गुजरते हुए उसके इतिहास भूगोल को खंगाल सकता है, मनुष्यता की टोह ले सकता है। लोक सेवा आयोग, हिंदू हॉस्टल, चंद्रशेखर पार्क, इंडियन प्रेस, बालसन चौराहा, भारद्वाज आश्रम, आनंद भवन, स्वराज भवन से होते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। इस तरह यह पूरी यात्रा जितनी ऐतिहासिक होगी उतनी ही सांस्कृतिक। इसमें समाज का व्यापक रूप और व्यक्ति के मानस का सौंदर्य,

सहज ही उद्घाटित होगा। कुबेरनाथ राय अपने निबंधों में बहुत कुछ ऐसा ही करते हैं। उनके निबंध पुराणों से, मिथकों से, लोक गाथाओं से आकार लेते हैं, जहाँ प्रवेश करते हुए हम लगातार अपने को समृद्ध कर रहे होते हैं। जब वे किसी पात्र को विषय बनाते हैं तो उसको देखने की प्रचलित दृष्टि को भी पूरी तरह से बदल देते हैं। भारतीय लोक और संस्कृति के विरल गायक के रूप में वे हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। जब वे दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के महानायकों और परंपराओं के महान लेखकों को अपना विषय बनाते हैं तो भी उसे अपनी मिट्टी और अपने समय से जोड़ देते हैं। उनके ऊपर की गई टिप्पणी ललित मनोहर शैली में पुराणों, मिथकों और अन्य ग्रंथों की सामग्री पर उनकी समसामयिक प्रसंग की टिप्पणी उन्हें एक विशिष्ट निबंधकार बनाती है, जहां उनकी दृष्टि इतिहास बोध या तर्क के बजाय सौंदर्य पर अधिक टिकी रहती है। सौंदर्य की अकुंठ अभिव्यक्ति को उनके निबंधों का प्राण कहा गया है। कुबेरनाथ राय के मैंने कहा है कि 16 जो है निबंध संकलन है जो उनके रहते प्रकाशित हुए, और बाद में 5 संग्रह और आए जो मोहम्मद हारून रशीद खान की देखरेख में प्रकाशित हुए। पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ था, फिर रसाकेटक 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1974 में, निषाद बासुरी 1974 में, पर्ण मुकुट 1978 में, महाकवि की तर्जनी 1979 में, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 में, किरात नदी में चंद्र मधु 1989 में, मन पवन की नौका 82 में, दृष्टि अभिसार 82 में, त्रेता का वृहत साम 86 में, चिन्मय भारत 86 में, कामधेनु 1990 में, मराल 1983 में और उत्तर कुरु 1994 में। इसके बाद कुछ संकलन और आए। आप इसमें से देखेंगे कि वह प्रिया नीलकंठी से ही वे चर्चित हो जाते हैं, और उसके बाद रस आकेटक, गंधमाधन, अनिषाद बासुरी, महाकवि की तर्जनी जो है, मराल, ये तो इतने चर्चित हुए कि कुछ पूछना ही नहीं है। जब आप उनके निबंधों में प्रवेश करते हैं तो फिर वो चाहे बात प्रकृति की हो, चाहे नायकों की हो, चाहे वो कवियों की हो, चाहे वो व्यंग की धार हो या उनका चुटीला अंदाज हो, सब कुछ जैसे कि आपको खींच लेता है। कुछ निबंधों के दृष्टांत भी हम देख सकते हैं। जैसे कुबेरनाथ राय के निबंधों में, जैसा कि मैंने कहा था, एक अलग ही यात्रा होती है, लेकिन यह सिर्फ कोरा गप नहीं होता बल्कि जीवन और दर्शन से भरा होता है। अपने पहले निबंध संग्रह के पहले निबंध गुलर का फूल में वे गुलर की प्रकृति को उसी के हवाले से स्पष्ट करते हैं। अब ये दिलचस्प है जानना कि गुलर क्या कह रहा है। गुलर कहता है कि असुर का वध करने के पश्चात उनके नखों में भयंकर जलन होने लगी। उनके नखों में मतलब नरसिंह अवतार की बात कर रहे हैं वो। भयंकर जलन होने लगी। यह जलन जब किसी उपाय से शांत न हो पाई तो नारायण पीड़ित होकर हमारे पास आए। तीनों लोकों के त्राता जनार्दन को अपने दरिद्र द्वार पर खड़ा याचना की मुद्रा में देखकर मैं धन्य धन्य हो गया और उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दिया। उनकी नख ज्वाला तो मेरे शरीर में नखों के धसाने से शांत हो गई, परंतु उस दाह को खींच कर मेरा शरीर विषाक्त हो गया। तभी से फोड़े की तरह फल व्रण ही मुझ में लगता है, पुष्प मुझ में नहीं लगता। फल भी रसहीन और कीटपूर्ण होते हैं। तो नरसी अवतार की जो है कहानी में, उसकी कथा में अगर आप इस कथा को जोड़ देते हैं तो आप ये पाएंगे कि यह जो है उस स्वरूप की उत्तर कथा मालूम पड़ती है, जिसमें गुलर के योगदान को समझा जा सकता है, उसकी पीड़ा को और उसके वर्तमान के स्वरूप को महसूस किया जा सकता है। इसी तरह सनातन नीम शीर्षक निबंध में निबंधकार ने नीम की चर्चा करते करते जॉर्ज आरविल के उपन्यास 1984 तक को इसमें शामिल कर लिया है। वे कहते हैं, साहित्य में हमारे बाद ही प्रलय का नारा बहुत चल रहा है। सबसे अधिक बुलंद आवाज जॉर्ज आरविल के प्रसिद्ध उपन्यास 1984 में व्यक्त हुई है। 1984 का घटनाकाल आने में 20 वर्ष की देर है। तब तक मनुष्य की आत्मा का प्रकाश दुर्वह अधिनायकवाद की लौह प्राचीर छेद कर बाहर आ जाएगा। ऐसे लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। आत्मा का लोहा सबसे कोमल और सबसे कठोर होता है। इसी से सारी विकृतियों के बावजूद कुछ मामूली, धीमी, सस्ती जीवन की बूंदें प्रत्येक विकृति में बच रहती हैं। नीम का फूल उसी मामूली, धीमी, सस्ते परंतु अमर स्नेह का संकेत करता है। इस तरह निर्वासन और नीलकंठी प्रिया निबंध में कुबेरनाथ जी बसंत से होते हुए निर्वासन तक पहुँचते हैं और गुरुदेव रविंद्रनाथ को याद करते हैं। रविंद्रनाथ निर्वासन रस के कवि नहीं थे। साहित्य में निर्वासन को स्वतंत्र रस के रूप में नवलेखन के अंदर देखा जाने लगा है। रविंद्रनाथ अकेलापन के कवि हैं, नित्य अकेला।

0: में कवि अपने एकांत में, अपने चरम क्षणों में अकेले जीता है। परंतु उन्होंने यक्षपुरी का राज्य बनना इसलिए हे और विकृत माना है कि वह अकेला ही नहीं, निर्वासित कोटरबद्ध जीव है। अकेलेपन में आवश्यक नहीं कि निर्वासन ही हो। इस तरह कवियों की दुनिया पर निबंधकार ने बार बार विचार किया है, जैसे वह अपने समय के कवि को सचेत कर रहे हों। अपने पढ़े लिखे समाज पर भी वे चुटकी लेते हुए विचार करते हैं। यह जरूर है कि यह सब विसंगतियों को उजागर करते हैं और उनसे बाहर निकलने की छटपटाहट पाठक में पैदा करते हैं। वे रस आखेटक में होमर, वर्जिल और शेक्सपियर पर मोनोलॉग लिखते हैं। ये तीनों मोनोलॉग उनकी लेखनी का कमाल दिखाते हैं। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि पाठक इन लेखकों के समय में प्रवेश कर गया है, या ये लेखक पाठक के समय में प्रवेश कर गए हैं। वे वर्जिल पर लिखते हुए अंत में कहते हैं, होमर यदि यूरोपीय साहित्य का कवि पितामह एवं कवि व्याघ्र है तो कवि गुरु, कवि सुपर्ण यानी राजपक्षी हूँ मैं, जो रोमन ध्वज पर निरंतर सवार होकर चलता है। हमारे बाद आता है दाते, जो यूरोपीय साहित्य के महाकांतर का मनियारा सांप है। शेक्सपियर पर लिखते हुए उन्होंने उनकी रचनाओं और समय की सटीक ढंग से व्याख्या की है। रचनावली के संपादक ने भूमिका में लिखा भी है कि शेक्सपियर ने जो प्रेम केंद्रित ग्रंथ लिखे उनके शीर्षकों के संबंध में कुबेर जी ने इस निबंध में उनका हिंदी रूपांतरण भी किया है, जैसे एकांत समर्पण रोमियो एंड जूलियट, बासंती विदग्धता एज यू लाइक इट, अबोध सुकुमारिता टेम्पेस्ट, तीव्र वासना एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, वाग विदग्धता लव्स लेबर लॉस्ट, अबोध करुणा ओथेलो, हेमंती वासना हैमलेट, रिक्त प्रवंचना ट्रायल्स एंड क्रिसिडा इत्यादि। अपने आलोचकों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। शेक्सपियर पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके पात्रों में सजीवता वहीं पर आई है जहां विकृत संदर्भ है। इसके संबंध में शेक्सपियर कहता है कि मैं जिस युग में पैदा हुआ था उसके प्रति अनुभूति की ईमानदारी मुझे बरतनी ही चाहिए। मेरा युग ही विकृत था, मैं तो अनुभूतियों का दर्पण मात्र हूँ। शेक्सपियर ने अपने युग का वर्णन करते हुए कहा कि उनका युग मुक्त मदिरापान था तथा मुक्त वासना का युग था। वह कैथोलिकों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों का युग था। शेक्सपियर कहता है कि मैंने प्रत्येक पृष्ठ अपने हृदय के रक्त से लिखा है। जैसे तुम्हारे तुलसीदास ने मुगलों के अत्याचारों की व्यंजना के लिए वक्रोक्ति का आश्रय लिया, वैसे ही मैं भी जब सड़े हुए डेनमार्क की चर्चा करता हूँ तो मेरा संकेत अपने ही रक्त प्लावित देश से है। हैमलेट की आलोचना करने वालों के बारे में उसने लिखा कि यह मुझे ही नहीं मालूम था कि मैं अनेक तहों में से कौन सी तह को व्यंजित करना चाहता हूँ। शेक्सपियर ने अपने आलोचकों के तीन दलों के संबंध में भी विवरण दिया है। और निबंध के अंत में जब पूरब दिशा पर लालिमा का आभास शेक्सपियर के प्रेत को मिलता है तो वह कहता है कि अंधकार रहते रहते यह धरती छोड़कर मुझे प्रेत लोक में लौट जाना चाहिए। कुबेरनाथ राय का लेखन बहुत विस्तृत और बहुआयामी है। ऐसे में इतनी छोटी अवधि में उन पर समग्र रूप से बात नहीं हो सकती। एक दृष्टांत ही दिया जा सकता है, पाठकों में जिज्ञासा ही उत्पन्न की जा सकती है। यह जरूर है कि उनके लेखन में प्रवेश करने के बाद पाठक उन्हें छोड़ नहीं सकता। मन कहता है जो भी उन्होंने लिखा है सबकी यात्रा कर ली जाए। यह पूरी यात्रा पाठक को बेहद समृद्ध करने वाली है। यह जरूर है कि जिस तरह के विषय उन्होंने उठाए हैं वे तत्समनिष्ठ भाषा में ही सुरुचि संपन्न बनते हैं। नए पढ़ने वालों के लिए कुबेरनाथ जी थोड़े जटिल हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का अमृत भी इसी बहाने मिलता है। उम्मीद है कि हमारे पाठक कुबेरनाथ राय जी को पढ़ेंगे, समृद्ध होंगे और यह पूरी यात्रा इतनी दिलचस्प है उनके यहाँ कि भारतीय लोक, भारतीय ऋतुओं का, नक्षत्रों का और यहाँ के देवी देवताओं का, वैदिक और पौराणिक संदर्भों का जो संदर्भ लेते हैं उसकी इतनी विराटता है, इतनी तहें हैं, इतने आयाम है कि आप जब उनसे गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुबेरनाथ राय का लेखन हमारे अध्ययन का एक तरह से अनिवार्य अंग है, उससे गुजरना चाहिए, उसे देखना चाहिए। तो आपने मुझसे सुना कुबेरनाथ राय के रचना संसार के बारे में। उम्मीद है कि आप कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं से गुजरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: डॉक्टर कुबेरनाथ राय का रचना संसार हिंदी कार्यक्रम में अभी आपने प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की ये वार्ता सुनी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

कलाकार अरुण गुलवाड़ी। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं योगेश प्रवीण की लिखी एक भक्ति रचना, जिसे गाया है अरुण गुलवाड़ी ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं रूप कुमार रूप का लिखा गीत, जिसे गाया है एक बार फिर अरुण कुलवाड़ी ने।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार थे अरुण गुदवाड़ी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी की गीत रचना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म यादें का गाना है ये।

चांद भी ठहर जाए, सितारे भी मुस्करा जाएं। चांद भी ठहर जाए, सितारे भी मुस्करा जाएं, जब इस शाम में आपके साथ कुछ पल बिताए जाएं। हवाओं में घुल जाए इश्क का पैगाम, हवाओं में घुल जाए इश्क का पैगाम, और ज़िंदगी बन जाए एक खूबसूरत शाम।

वफा का रिश्ता बड़ी मुश्किल से निभाया जाता है। वफा का रिश्ता बड़ी मुश्किल से निभाया जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि दिल से चाहा जाता है। जो

हर हाल में साथ निभा जाए, जो हर हाल में साथ निभा जाए उसी को सच्चा हमसफर कहा जाता है।

आनंद बख्शी की गीत रचना, कल्याण जानन जी का संगीत, राजकुमार और सलमा आगा की आवाज़ें। फिल्म का नाम महावीरा। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से।

वफा करने वालों का अंदाज ही निराला होता है। वो रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी को संभाल जाता है। फिलहाल आपके पेश नजर है 102 नॉट आउट फिल्म का ये गाना।

ये था आज का हमारा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250, यानी

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कानून और हम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्कर्ष शुक्ल की वार्ता, बाल श्रम, बिखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी।
2: श्रोताओं, बचपन मानव जीवन का सबसे कोमल, रचनात्मक और स्वर्णिम काल होता है। यह वह समय होता है जब एक नागरिक के भविष्य की नींव रखी जाती है। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बेहद संवेदनशील और विचारणीय है, और वह विषय है बाल श्रम, बिखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं, भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है। इन्हें किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने या घरेलू उद्योगों में काम पर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को किशोर का दर्जा दिया गया है। कानूनन इन्हें किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करना प्रतिबंधित है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार बाल श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है तथा जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। श्रोताओं, रेडियो के माध्यम से जब हम देश की समस्याओं और सामूहिक चेतना की बात करते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात याद आती है, जब उन्होंने अपने संबोधन में देश के युवाओं, नौनिहालों पर तथा गरीब परिवारों के बच्चों पर चिंता व्यक्त करते हुए बेहद मार्मिक शब्दों में कहा था, जब देश का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है या बचपन में ही उसके हाथों में किताबों की जगह औजार थमा दिए जाते हैं तब यह केवल एक बच्चे का नुकसान नहीं होता बल्कि पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। विकास की यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक समाज का अंतिम बच्चा भी स्कूल नहीं पहुंच जाता। देश में सबका साथ तथा सबका विकास की योजना में सबका प्रयास भी होना चाहिए। हमें एक ऐसी सामूहिक चेतना जगानी होगी जहां कोई मासूम बाल मजदूरी के दलदल में ना फंस सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की यह बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है। श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि बीते 12 जून 2026 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस दिन की शुरुआत की थी। इस वर्ष यानी वर्ष 2026 की वैश्विक थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन एंड डिसेंट वर्क फॉर अदर्स। दोस्तों, यह थीम सीधे तौर पर हमें यह बताती है कि जब खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी फाउल करता है अथवा गलत तरीके से खेल को खेलता है तब उसे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस थीम का उद्देश्य बाल श्रम को

रेड कार्ड दिखाकर वयस्कों के लिए रोजगार के उचित अवसर सुनिश्चित करना है। श्रोताओं, इन सब के बीच हमें यह जानने की आवश्यकता है कि बाल श्रम के पीछे कौन कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गंभीर गरीबी और लाचारी। जब एक परिवार के पास दो वक्त की रोटियों का इंतजाम नहीं हो पाता तो वे अपने मासूम बच्चों को काम पर भेज देते हैं। श्रोताओं, इसका दूसरा कारण है सस्ता श्रम। बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और इसलिए कई अनौपचारिक उद्योगों, ढाबों के मालिक बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है। श्रोताओं, यूनिसेफ के अनुसार बाल मजदूरी के पीछे एक बड़ा कारण आपदा, युद्ध, बच्चों का पलायन और विस्थापन भी है। श्रोताओं, वर्तमान में बाल मजदूरी का स्वरूप बदल गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा था कि वर्तमान में बाल मजदूरी का स्वरूप बदल चुका है। पहले बच्चे बड़ी फैक्ट्रियों, कोयले की खदानों और संगठित उद्योगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, जहां प्रशासन द्वारा छापेमारी करके उनको छुड़ा लेना आसान होता था। लेकिन अब यह समस्या हमारी नज़रों से छिप गई है। वर्तमान में बाल मजदूरी का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में शिफ्ट हो गया है। कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों और एनजीओ की कार्रवाई से बचने के लिए कई उद्योगों और फैक्ट्रियों में बच्चों को रात के समय अथवा नाइट शिफ्ट में काम कराया जाता है। दिन में ये जगहें बंद अथवा सामान्य दिखाई पड़ती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बाल श्रम का यह नया स्वरूप आधुनिक समाज और प्रशासन के लिए बेहद गंभीर चुनौती बन गया है। श्रोताओं, सरकारी प्रयासों के अलावा भी गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओज ने इस भयावह समस्या से मुक्ति के लिए जमीनी स्तर से वैश्विक मंचों तक बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन और बाल रक्षा भारत जैसे गैर सरकारी संगठन स्थानीय पुलिस और श्रम विभाग के साथ मिलकर अवैध फैक्ट्रियों, खदानों, ढाबों पर छापेमारी करवाकर बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराते हैं। श्रोताओं कुछ गैर सरकारी संगठनों ने ब्रिज स्कूलों की शुरुआत की है, जहां बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से बुनियादी शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। श्रोताओं, इन संगठनों ने गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में बाल मित्र ग्राम तथा बाल संरक्षण समितियों का गठन करके वहां बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए हैं ताकि इलाके का कोई बच्चा बाल मजदूरी के दलदल में ना फंस सके। दोस्तों, यह तो बात हुई गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए गए प्रयासों की। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान और हमारी सरकारों की इस समस्या से लड़ने में क्या भूमिका रही है। साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि अरे भाई, हमारे देश का कानून तो कमज़ोर है, तभी तो बाल श्रम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सच इसके विपरीत है। हमारे देश का कानून तो बाल श्रम को लेकर बहुत सख्त प्रावधान करता है। बस ज़रूरत है कि लोगों को इसकी सही जानकारी हो और इसका कड़ाई से पालन हो। आज हम कानून और हम कार्यक्रम के माध्यम से इन कानूनी प्रावधानों से आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे देश की सर्वोच्च किताब यानी भारतीय संविधान की। हमारे संविधान निर्माताओं ने दशकों पहले बाल मजदूरी के इस खतरे को भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने संविधान के भाग 3, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वहां बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए थे, जिनमें से पहला है संविधान का अनुच्छेद 24, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह घोषणा करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान अथवा किसी अन्य प्रकार के जोखिम भरे नियोजन में काम पर नहीं रखा जाएगा। यह एक पूर्ण प्रतिबंध है जिसका उल्लंघन करना सीधे संविधान की अवहेलना करना है। इसके बाद हम आते हैं संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे हम शिक्षा का अधिकार नाम से भी जानते हैं। संविधान में इस अनुच्छेद को साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। दोस्तों, यह कानून कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थात फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना उसका मौलिक अधिकार है। कानून का सीधा सा सिद्धांत है कि यदि बच्चा 14 वर्ष से छोटा है तो उसका एकमात्र स्थान स्कूल की कक्षा है, ना कि किसी दुकान का काउंटर या चाय का स्टॉल। दोस्तों, समय के साथ कानूनों को और कड़ा किया जा रहा है और इसी क्रम में संसद ने साल 2016 में

पुराने बाल श्रम कानूनों में एक ऐतिहासिक संशोधन किया, जिसे हम बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं। संशोधित अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अब आप किसी प्रकार का व्यवसायिक काम नहीं करवा सकते, चाहे वह काम खतरनाक श्रेणी में आता हो अथवा ना आता हो। हाँ, कानून में सिर्फ एक छूट है कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अपने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस कानून की एक खासियत यह भी है कि 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर श्रेणी में रखा गया है। कानून के मुताबिक इन किशोरों को किसी प्रकार के खतरनाक उद्योगों जैसे पटाखा फैक्ट्रियां, रासायनिक कारखाने, कबाड़ का काम या भारी मशीनरी उद्योग में लगाने से पूरी तरह से पाबंदी है। दोस्तों, समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानूनों को तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। जैसे कि पहली बार अपराध करने पर 6 महीने से 2 वर्ष की जेल हो सकती है, और यदि एक बार पकड़े जाने के बाद भी कोई व्यक्ति वही अपराध करता है तो सजा की अवधि बढ़ाकर 1 से 3 वर्ष कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, केवल सजा देना ही समाधान नहीं है। जो बच्चे इस दलदल में फंस चुके हैं, उन्हें इस नर्क से बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना भी उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनमें से पहला है एक पोर्टल जिसे हम पेंसिल पोर्टल नाम से जानते हैं, जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। पेंसिल का अर्थ है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इसकी वेबसाइट है pencil.gov.in, जहां देश का कोई भी नागरिक बाल मजदूरी की शिकायत दर्ज करा सकता है। यह शिकायत सीधे जिला कलेक्टर और बाल संरक्षण इकाई के पास भेजी जाती है, और कानूनन इस पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अनिवार्य होता है। और दोस्तों, इसमें शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। दोस्तों, सरकार की एक दूसरी परियोजना जिसे हम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नाम से जानते हैं, इस परियोजना के तहत रेस्क्यू किए गए बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने के बजाय पहले विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जोड़े जा सकें। दोस्तों, अब जो मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर बताने जा रहा हूँ, जिसे हम चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन भी कहते हैं, आधुनिक दुनिया में ये संपर्क सूत्र बड़े प्रभावी हैं। आप यदि चाहें तो आप अपनी डायरी में इसे नोट कर सकते हैं, जिनमें से पहला है 1098 चाइल्ड लाइन। यह बच्चों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा है। यदि आपको कहीं पर भी कोई बच्चा संकट में बंधुआ मजदूरी करते हुए या लावारिस हालत में मिलता है, तो आप सीधे 1098 पर कॉल करें। दोस्तों, दूसरा नंबर है जिसे आप सब जानते हैं, वह है 112, जिसे अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर भी कहा जाता है। अब चाइल्ड लाइन को दोस्तों 112 के साथ एकीकृत अथवा इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आप चाहें तो सीधे 112 पर कॉल करके बाल श्रम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये कॉल पूरी तरह से मुफ्त होती है, और पुलिस तथा बाल कल्याण की विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेस्क्यू करके नया जीवन प्रदान करते हैं। दोस्तों, कानून की धाराएं अपनी जगह हैं। सरकारों ने विभिन्न प्रकार की डिजिटल वेबसाइट्स, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र भी अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आज कानून और हम कार्यक्रम के मंच से बहुत सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी दुकान पर जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ए छोटू, जरा 2 कप चाय लाना, तब हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अक्सर हम सोचते हैं कि पुलिस आएगी और कार्यवाही करेगी, लेकिन दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि पुलिस हर दुकान, हर ढाबे पर 24 घंटे मौजूद नहीं रह सकती। कोई भी समस्या जो कि सामाजिक प्रकृति की समस्या हो, तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक सामूहिक समाज उसके निवारण के लिए प्रयास ना करे। दोस्तों, असली पुलिस आपको और हमें बनना होगा। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, और इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हमें सबसे पहले यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने घरों में, अपनी दुकानों में या अपने किसी भी व्यवसाय में किसी ऐसे बच्चे को काम पर नहीं रखेंगे जिसकी उम्र कम हो। एक दूसरी चीज़ जो कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, वह यह है कि हम एक सजग उपभोक्ता बने। जब हम किसी फैक्ट्री, किसी दुकान अथवा चाय की किसी ठेले पर जाते हैं जहाँ बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हों, तो आप चुप मत रहिए,

0: ऐसी दुकानों और स्थानों का बहिष्कार करके उनकी शिकायत कीजिए। यकीन मानिए कि जब तक इन नियोक्ताओं पर आर्थिक, सामाजिक, कानूनी दबाव नहीं बनेगा, तब तक इन बच्चों का शोषण होता रहेगा और एक जिम्मेदार समाज की सामूहिक विफलता भी होती रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक बच्चे का बचपन बिखरता है तो केवल एक बच्चा ही नहीं टूटता, बल्कि इस देश का आने वाला भविष्य अपंग हो जाता है। जो हाथ कल देश की बागडोर संभाल सकते हैं, जो हाथ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न्यायाधीश हो सकते हैं, उन हाथों को मजदूरी के दलदल में ढकेलना एक अक्षम्य सामाजिक अपराध है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिज्ञा करें कि हम मूक दर्शक नहीं बनेंगे, हम एक जिम्मेदार समाज के रूप में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारा छोटू पुनः स्कूल जा सके। दोस्तों, हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें हम सभी को एक लाइन और जोड़ने का संकल्प लेना होगा, सबका प्रयास। दोस्तों, बाल श्रम का अंत विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक देश के हर बच्चे को उसका बचपन, उसकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य नहीं मिलता, तब तक एक मजबूत, समावेशी और विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। तो सजग रहिए, देश के कानून का सम्मान कीजिए और बाल श्रम के निवारण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कीजिए। अंत में, आपने मुझे सुना, आकाशवाणी प्रयागराज एवं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: बाल श्रम, बिखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी। कानून और हम कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्कर्ष शुक्ल की ये वार्ता। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। समाचार संध्या की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAB 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ

0: अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज

0: पास दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलप

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैतिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। ये माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमद रफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन,

0: और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का कयाम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: ब्रेतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लाजरिनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदु किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इनमें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अखदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफ़ुज़ फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर वख़ौज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म फ्रांस का ये दौरा सदर इमैनुएल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुल्क में तैयार करदा लंबी दूरी तक जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल LRLACM की आजमाइशी परवाज कामयाबी से अंजाम दी। इस क्रूज मिसाइल के सभी जैली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ DRDO लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासिद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब तजर्बा आत्मनिर्भर भारत और एक मजीद मजबूत कौमी दिफाई इको निजाम की जानिब एक और अगला कदम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने LRLACM की कामयाब आजमाइशी परवास पर DRDO टीम और सनत

0: शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। मुल्क के हसिस बाजार के अहम इशारे आज के कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के ऐलान के बाद सरमायाकारों का रुझान मुस्बत हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के मैच में स्वीडन ने ट्यूनेशिया को 1-5 से करारी शिकस्त दी। आज के दीगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बहामी तावुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबराह इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है गजलों का प्रोग्राम कहकशां। आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ। प्यार भरी नजरें जब हमसे टकराती हैं, प्यार भरी नजरें जब हमसे टकराती हैं, सूनी राहें भी महफिल बन जाती हैं। लब खामोश रहते हैं मगर, लब खामोश रहते हैं मगर दिल की सारी

कुछ तो बात है तेरी प्यार भरी नजरों में, कुछ तो बात है तेरी प्यार भरी नजरों में जो हर बार दिल को चुरा लेती हैं। बिना कुछ कहे ही हजारों मोहब्बत की बातें सुना देती हैं।

तेरी प्यार भरी नजरों का ही कमाल है, वरना इस दिल को किसी पर एतबार कहाँ था। तेरी नजरों ने जो छुआ तो लगा जैसे हर दुआ को अपना जवाब मिल गया।

जमीर काजमी की रचना, पंकज उदास का संगीत। और आवाज भी पंकज उदास।

तेरे बिना ये शाम भी उदास लगती है, तेरे बिना ये शाम भी उदास लगती है, हर धड़कन अधूरी सी बात कहती है। दिल ने तो बस बहुत चाहा तुझे भुला दें, दिल ने तो बहुत चाहा तुझे भुला दें, मगर हर याद में तेरी तरफ इशारा किया।

रुखसत तो हो रहे हैं मगर ये दूरी कहाँ है। दिल से दिल की मोहब्बत अभी भी दरमियाँ है। चलते चलते बस इतना सा वादा कर लेना, कल फिर मिलेंगे, यही हमारी दास्तां है।

0: इस नगमे के साथ ही आज का कहकशां प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त उज्ज्वल सिन्हा को इजाज़त दीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250, यानी 8004926250।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है फिल्म संगीत।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बार फिर आनंद बख्शी की गीत रचना, लेकिन इस बार संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दिए हैं अरमानों के फूल, अब तेरे आने का इंतज़ार रहता है हर पल। शायद किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए, इसी उम्मीद में गुजरता है हर पल।

कैफी आजमी की गीत रचना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, संगीत भी हेमंत कुमार का था और फिल्म का नाम था कोहरा। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से।

मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना एआर रहमान का संगीत, एक बार फिर सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की जोड़ी। इस बार फिल्म है

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारू विहाग में गाया ख्याल। गायक कलाकार पंडित अजय पोहनकर। आपके साथ तबले पर संगीत की है पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए।